नजम से गजल बन गई, तू रोज ही बदलती रही, असर से दखल बन गई, शिकायतें बढ़ती रही, मोहब्बत ये जंग बन गई, जिंदगी चलती रही, तुझको खबर ही नहीं, कोई डरी नहीं तो लड़ भी नहीं, बात आगे बढ़ती नहीं, तमाशे खत्म कर अभी, वो गलतियां गिनती गई, नफरतें बढ़ती गई, लोगों की सड़ती रही, शराब मुझे चढ़ती नहीं, मेरे आगे कभी किसी की भी चलती नहीं।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: It's commercial time.
6: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
7: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
8: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
7: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
8: मुगल बिल्डर्स?
7: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
9: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
7: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
9: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
7: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315066। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Huzzah 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: You are listening 97.1 FM.

Better, the radio station for people who love music. 97.1 FM.

0: when he looks in the eye.
1: जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे. हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
4: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं.
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का.
6: This is a public service announcement.
7: The station
8: that plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन. सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ. तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: दे गया।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
6: आई लव इट।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया

radio station for people who love music.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: ठहरिए जरा ये कमर्शियल तो सुन ले.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
7: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
8: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
7: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे. हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास.
8: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप.
7: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है. और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना.
8: तो फिक्र किस बात की?

0: पार्क फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
1: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
1: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
0: सलासा ट्यूशन सेंटर?
1: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
0: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
1: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
0: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: This is a public service announcement.
5: Everybody. The station. That plays
6: foot tapping music.
7: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioche straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

So here we go, let's discuss today's weather report. Janab, aaj Nottinghamshire ka temperature maximum is waqt janab 20 degree Celsius aur minimum 12 degree Celsius record kiya gaya. Halki phulki si sunshine aapko kisi kisi jagah pe milegi. Fizami humidity ka level is waqt 15% hai. और आपको ये बताते चलें कि जनाब बतदरीज बढ़ते बढ़ते बढ़ते लेकिन एकदम से कमी आएगी. शाम को 4 बजे के करीब टेम्परेचर रेस कर जाएगा जनाब 22 डिग्री सेल्सियस तक और ह्यूमिडिटी का लेवल हो जाएगा 44%, यानी कि बारिश के काफ़ी ज़्यादा इम्कानात हैं. और इस वक्त भी अगर कहीं बूंदाबांदी या हल्की फुल्की बारिश हो रही है तो फिर इस वक्त ऊपर एक बार नज़र दौड़ाइए, आसमान की तरफ मुंह कीजिए और फिर प्यारी सी आह भरी आवाज में शुक्र अदा कीजिए उस ऊपर वाले का जिसने खूबसूरत सी बारान रहमत आपके लिए नाजिल की और आपको थोड़ा सा मजीद एक्टिव कर दिया. जितनी गर्मी वैसे पीछे पड़ी है ना हमारे पूरे यूके में, इंग्लैंड में, किसी जगह पे भी, यानी कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पे वेदर काफ़ी बेहतर था लेकिन जब 36-37 को क्रॉस किया ना टेम्परेचर ने, बस शॉक्ड कि यार अब क्या होगा. लेकिन आज जब स्टूडियो आते हुए रास्ते में वॉक करते हुए, क्या बात है, फिर आज वही ज़बरदस्ती स्माइल पास करने वाले एक प्यारे से बाबा जी व्यक्ति मुझे मिले और बड़ी प्यारी सी स्माइल पास की और हम दोनों ने एक टाइम पे स्माइल पास की और आज बड़ा खूबसूरत दिन गुजरा. एनीवे और उसके बाद आपको आज रात के हवाले से मैं बताता चलूँ कि रात की सिचुएशन क्या है वेदर की, मौसम की, वो है टुनाइट विल रिमेन क्लाउडी. द रेन शुड ईज फॉर अ टाइम अर्ली ऑन बिफोर फर्दर स्पेल ऑफ रेन डिवेलप थ्रू द अर्ली आवर्स टिल डॉन. जी बिल्कुल, यानी आप ये कह लें कि रेनी नाइट आपके सामने होगी. अगर तो आप बारिश लवर हैं तो फिर तो जनाब आप बिल्कुल जा सकते हैं. कहाँ जा सकते हैं जनाब, किसी लॉन्ग ड्राइव पे, या तो फिर आपकी कोई बिजनेस ओरिएंटेशन है, कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन है, या आप नॉटिंघमशायर से बाहर जाना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा प्लान है कि आपने किसी हम सफर को, यानी अपने ही हम सफर को साथ लेके जाना है, तो फिर दिस इज बेस्ट टाइम. लेकिन मोटरवे पर थोड़ा सा एहतियात कीजिएगा. जूँ ही आप आउट होंगे उसके बाद स्पीड लिमिट्स को ध्यान में रखिएगा. बारिश की सिचुएशन देख के, अपनी वेदर फोरकास्ट अपने फ़ोन पे देख के किस तरफ जा रहे हैं, उस तरफ जाने वाली वो मोटरवे को जब आप पकड़ेंगे तब आपने थोड़ा सा एहतियात करना है और उसके साथ साथ कोशिश ये करनी है कि आप ज़्यादा तेज़ गाड़ी ना चलाएं और ताकि आपकी जो बिज़नेस मीटिंग या प्रेजेंटेशन है वो एहतियात के साथ उसमें आप पहुँच जाएँ और सुबह एक ज़बरदस्ती कामयाबी लेके आप वापस लौटे हमारे अपने शहर यानी नॉटिंघम में.

जी तो लिसनर्स आपको ये भी बताते चले कि जनाब डैब के अलावा यानी डैब पे आप हमें फजा के नाम से सर्च करेंगे, इसके अलावा एफएम पे 97.1 एफएम इज द फ्रीक्वेंसी, और उसके अलावा आप हमें हमारे मोबाइल ऐप के जरिए भी सुन सकते हैं। बिल्कुल जनाब, आप कैसे सुनेंगे, आप जाएंगे गूगल प्ले पे या प्ले स्टोर पे, वहां जाके आप टाइप करेंगे रेडियो फजा या फजा रेडियो 97.1 एफएम ऑफिशियल, और फिर एक बिल्कुल जनाब पर्पल कलर के बैकग्राउंड के साथ गोल्डन या बेज कलर में लिखा हुआ फजा आपके सामने आएगा। उसको डाउनलोड कीजिए, गेट कीजिए, और सिर्फ आपने उसको प्ले करना है, फिर आप जुड़ जाएंगे हमारे साथ, हम होंगे आपके साथ, इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन और एंटरटेनमेंट का सेगमेंट चलता रहेगा। बहुत ही छोटी सी ऐप है, आई थिंक ओनली ऑन 17 to 18 MB, जबरदस्त तरीके से आप इंजॉय करेंगे। इसके अलावा आपको ये बताते चलें कि लाइव स्ट्रीमिंग भी अवेलेबल है। जनाब लाइव स्ट्रीमिंग के लिए आपको क्या करना है, घर में जितनी भी महिलाएं बैठी हैं या सुनती हैं रेडियो को 97.1 एफएम को, फजा को ट्यून अप करती हैं, जिनसे उन्हें अंदाजा होता है कि हमारे आने वाले इवेंट कौन से हैं और इवेंट्स के साथ साथ हमारी बाकी ट्रांसमिशंस कैसी हैं, तो जनाब एड्रेस बार में आप लिखेंगे या लिखेंगी live.radiofaza.co.uk, और फिर जनाब आप हमारे साथ होंगे, हम आपके साथ होंगे। अलावा जी हमारी बाकी जितनी भी ट्रांसमिशन हैं उनको बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कीजिए, विच इज़ radiofaza.co.uk।

तो जनाब आज का टॉपिक अनाउंस किए देते हैं। जनाब आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है और आज का जो मौजू है, जो सब्जेक्ट है, वो है कोशिश यानी कि ट्राई। जनाब इसके लुबे लबाब पे, इसके खदोहाल पे, इसके एनवायरनमेंट पे और इसके स्ट्रक्चर पे हल्की सी गपशप करेंगे और गपशप में आप लोग मेरे साथ रहेंगे कैसे। 0115 7100971 ये मैं है मेरे स्टूडियो का लाइव व्हाट्सएप नंबर, जिस पे आप जाएंगे अपने व्हाट्सएप पे, आप सेव कीजिए रेडियो फजा के नाम से। उसके बाद जब आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे तो मैं ही आपका मैसेज रिसीव करूंगा, पढ़ूंगा भी। और जितने भी हमारे व्यक्ति हैं, ऐसे पुरुष जो इस हमारे नॉटिंगहमशायर के लोकल लोग हैं, आपसे गुजारिश है कि आप मैसेजेस तो करते हैं लेकिन अपना पोस्टल कोड यानी कहां से किस एनजी से हैं वो लाजमी लिख दीजिए, या फिर आप नॉटिंगहमशायर से बाहर हैं या आसपास के किसी टाउन से हैं या किसी सिटी से हैं जहाँ पे आप हमें ऐप के जरिए सुन रहे हैं, तो फिर आप उस टाउन का नाम बताइए। जैसा कि इस वक्त मालिनी जी हमारे साथ मौजूद है बोल्टन से, आयशा कुद्दूस हमारे साथ मौजूद हैं जनाब लीड से, ये हमें सुन रही है। थैंक यू वेरी मच। जवाल ने हमें भी ट्यून अप किया, इन्होंने भी मैसेज किया, मोहसिन दुबई से हमारे साथ हर वक्त होते हैं, थैंक यू वेरी मच मोहसिन, आपका बेहद शुक्रिया। तो ये जनाब कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपको दी। अलावा जी हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो लोकल हैं इस वक्त, आपको तहे दिल से वॉर्म वॉर्म वॉर्म वेलकम ऑलवेज, और स्वागत मैं उन लोगों का करता हूं जो लोग नए जुड़ते हैं मेरे साथ। और वेलकम बैक उन लोगों को किया जाता है जो ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद है, और हल्की सी जो बीजीएम है उसके साथ, या फिर आप ये कह लें कि कमर्शियल ब्रेक वगैरह कोई आती है तो उसके बाद हमारे साथ वापस जुड़ते हैं।

लेकिन सामिन जो कोशिश है जो ट्राई है बेसिकली इसके हवाले से थोड़ी सी मैं अपनी विशेष टिप्पणी आपको दे दूं, अपने विचार आपके साथ शेयर कर दूं ताकि मुझे ये अंदाजा हो जाए कि मेरे विचार और आपके विचार क्या आपस में मिल रहे हैं या नहीं। अगर नहीं मिलते तो फिर भी अच्छी बात है क्योंकि विचारों का ना मिलना बेसिकली कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन ये है कि अगर हमारे इस डिस्कशन से और कोई तीसरा बंदा जो हमारे साथ मौजूद है उसको बात समझ में आ जाए, कहते हैं ना शायद कि मेरे दिल में उतर जाए तेरी बात, तो फिर क्या ही बात हो। कहते हैं ना कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है तो फिर किस बात का गम हो अगर वो पूछ ले हमसे। लेकिन बड़ी जबरदस्त एक कोट है और इस कोट से मैं शुरू करता हूँ अपने आज के टॉपिक को और ये टॉपिक हमारे साथ आगे चलेगा। कोशिश जिंदगी में किन जगहों पे होती है? सबसे बड़ी कोशिश इंसान अपने आप को बेहतरीन बनाने में करता है। अब यहाँ पे सियाने बंदे ये कहते हैं, जैसा कि आपने सोचा मैंने सियाना कहा तो आपने मुझे देखा जी, बिल्कुल सियाने ये कहते हैं कि आप ये कोशिश करें कि आप अच्छा बने, किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए।

देश में कहीं भी हम होते हैं तो हम बड़े ना थोड़े से ओ आने ना बड़े आंकड़ा ले जी गलेगजम जो तो उसमें हमारी सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है हम थोड़ी सी अपनी ईगो को रखते हैं, अपनी अना को आगे रखते हैं। हालांकि इज इट गुड, सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है हर बंदे की होती है, कुछ लोग उसको अना का नाम देते हैं, कुछ लोग कहते हैं यार ये ईगो है इसकी, ये खफा खफा रहता है, लेकिन हमेशा हर वक्त इंसान एक जैसा किसी के साथ रह नहीं सकता, सिचुएशंस हर वक्त बदलती रहती हैं। कई बार आप जिंदगी में इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इतने इरिटेट होते हैं कि आप किसी से बात भी नहीं करना चाहते, आप भी कोशिश करते हैं, आप ये सोचते हैं, आप ये समझते हैं कि अगला बंदा जो आपसे रابطہ कर रहा है या आप उससे रابطہ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको नज़र आ रही है वो उसके पास हो सकता है वक्त की सिचुएशन में ना हो, या जो आप उससे एक्सपेक्ट करेंगे यार दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ही शुड हैव टू गिव मी, और ये देने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी इसकी तरह का बन जाऊँ। तो कभी भी सामीन आप जब इस तरह की कोशिश करेंगे तो वो कोशिश फिर आप ये कह लें कि रायगां ही जाएगी, क्योंकि इंसान के पास जो असल सहारा होता है उसकी मेहनत का होता है, उसकी कामयाबी का, और जब उम्मीद कोशिश के साहिबान को लेके चलती है, कोशिश के उस खूबसूरत परंपरा को या अपने आशियाने को लेके साथ चलती है ना, तो फिर कोशिश बेसिकली खुद एक हुनर बन जाती है, और फिर इंसान के पास जो कामयाबी आती है उस कामयाबी का सबसे इम्पोर्टेंट जो सहरा होता है, जो सबसे कहते हैं ना कामयाबी का जो सहरा होता है, यानी जो उसका क्रेडिट होता है बेसिकली, वो किसको जाता है, वो उस इंसान को जाता है जिसको देख के आपने किसी काम की कोशिश करना शुरू की।

0: नहीं लिस्नर्स, बात हम कोशिश पे करते रहेंगे, लेकिन अभी हम
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
3: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
4: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
3: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
4: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
3: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
4: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
3: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
4: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
3: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
4: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
3: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
5: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर
0: फजा 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: 97.1 FM.
1: Back to back hip hop music.

0: कोई सूरजा।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
3: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
4: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
3: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
4: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
3: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, यहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
4: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
3: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
5: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
6: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
7: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11+, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station
2: that plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 एफएम,
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
5: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
6: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो. आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए.
7: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं.
6: सलासा ट्यूशन सेंटर?
7: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है.
6: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता.
7: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है.
6: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ.
8: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231. कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा.
9: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: It's commercial time.
1: Rosyth Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyth Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyth Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyth-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyth Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो वर्जन 87.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज आप सुन रहे हैं सोलो राज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। सो सामीन जो है वो तकरीबन मेरा आपके दरमियान 1 घंटा मुकम्मल होने वाला है। सो जहाँ दोपहर के इस खूबसूरत वक्त में हम करेंगे ढेरों गपशप, हल्की फुल्की जो है वो मस्ती भी होगी, खूबसूरत गुफ्तगू होगी, थोड़ी सी मौसीकी होगी और दिलचस्प बातें भी होंगी और कुछ जो है वो हल्का फुल्का जो है ना तंज़ो मजाक भी चलेगा प्रोग्राम में। तो अगर आप जो है इस वक्त घर पे हैं, काम पर हैं या फिर सफ़र में हैं या अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, तो बस अपने लंच को इंजॉय कीजिए। और अगर आप काम काज करते हुए मुझे सुन रहे हैं तो इतना बता देती हूँ कि अपनी ज़िंदगी में जो है ना वो अपने लिए टाइम निकालना चाहिए। कम से कम आप खाना खाते हुए जो है ना वो काम को छोड़ दें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अब जो है वो खाना भी साथ साथ खा रहे होते हैं और साथ साथ काम में भी लगे होते हैं। सो अभी जो है मैं यही बोलूँगी कि अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें, जितने मर्जी मसरूफ़ हों कम से कम खाने को प्रॉपर टाइम दें, खाने को सही से इंजॉय करें। सो खाने को साथ इंजॉय करें, साथ में रेडियो 97.1 एफएम को ट्यून करें और थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दें, क्योंकि आज का ये वक्त सिर्फ आपका है। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हमने ज़िंदगी में जो है वो कितनी दफ़ा खा चुकी होगी। इट्स मीन के कैसे लंच के बारे में बात करेंगे। अब वो लंच जिसको खाते खाने के बाद इंसान बोर नहीं होता, मतलब बहुत से खाने ऐसे होते हैं जिनको हम खाते हैं तो रेगुलर नहीं खा सकते। इसी तरह जो है ना वो मोस्ट फेवरेट होते हैं किसी किसी का। मेरी जैसे बात की जाए तो मुझे बिरयानी बहुत पसंद है। अगर मुझे दिन में तीनों टाइम भी बिरयानी मिले ना तो मैं खुशी से खा लूँगी। बात को हम आगे लेकर चलेंगे और उसी के साथ साथ मैंने आज का जो टॉपिक डिसाइड किया था प्रोग्राम में, मैंने सोचा था कि इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है अनसेट फीलिंग्स।

अनकही बातें जो दिल में हैं पर जुबान पर नहीं आ सकती. सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ प्रोग्राम में तकरीबन मेरा आपके दरमियान अभी कमर्शियल ब्रेक का भी समय आ जाना है. तो इनकी अगर इस टॉपिक के हवाले से अगर बात की जाए तो वो बातें जो वो एहसास जो हम दिल में रखते हैं लेकिन जबान पर जो है वो ला नहीं पाते, कभी डर की वजह से और कभी शर्म की वजह से और कभी जो है उस डर से कि सामने वाला हमें समझेगा भी या नहीं. हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के साथ क्यों नहीं शेयर कर सकते, उनको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर सकते, हम उनको बता क्यों नहीं पाते. रद्द होने का जो डर होता है ना, कहीं अगर मैंने बता

0: next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: ओए खुशियां मनाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ भंगड़े पाओ
2: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं। खैर तो है,
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
2: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो 97.1 FM के लास्ट स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज आवाज अपने सलराज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। और उसी के साथ साथ सामीन हमारे रापदे में आने 1 घंटा गुजर चुका है और बाकी 1 घंटा जो रह चुका है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की जो हमारी बात है, वो हम कर रहे हैं अनसेट फीलिंग्स पे, यानी कि वो बातें जो हम कहना चाहते थे मगर कह नहीं सके, वो मोहब्बत जिसका इजहार नहीं कर सके, वो माफ़ी जो वक्त पर नहीं मांग सके, वो शिकायत जो दिल में ही रह गई, वो शख्स जिसे हम बताना चाहते थे कि तुम मेरे लिए बहुत अहम हो मगर जुबान ने जो है साथ नहीं दिया।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक सर। एक छोटा सा ट्रैक शाम हो गया था, अब दोबारा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है अनसेट फीलिंग्स, उसको डिस्कस करते हैं। सामीन, कभी कभी जो है इंसान सबसे ज़्यादा बात कर रहे थे कि उसी शख्स से हमोश हो जाता है जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है। सो जिसे बात किए बिना जो है वो दिन अधूरा लगता था, उसी के सामने आकर अल्फाज जो हैं वो साथ नहीं देते। बहुत से लोग हमारे दरमियान ऐसे भी होंगे जो दिल की बात करने के लिए, ऐसी बातें करने के लिए मोबाइल हाथ में पकड़ा, मैसेज लिखा, लेकिन फिर उसको डिलीट कर दिया, दोबारा लिखते हैं और फिर उसको डिलीट कर देते हैं, और आखिर में सिर्फ एक छोटा सा जो है वो हाय लिख के भेज देते हैं। जबकि दिल में पूरा नॉवल लिखा होता है कि दिल कहना चाहता है कि मैं आज भी तुम्हें याद करता हूँ, मुझे आज भी तुम्हारी वो बात याद है, तुम्हारे जाने के बाद बहुत कुछ बदल गया है, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बस थोड़ा सा टूटा हुआ हूँ, मगर हम कहते हैं कि मैं ठीक हूँ, और यही दो अल्फाज जो है ना शायद दुनिया का सबसे बड़ा झूठ होते हैं। अब वो दो अल्फाज कौन से हैं कि मैं ठीक हूँ, कितने लोग हैं जो ये जुमला जो है रोज बोलते हैं, शायद हम सब इनमें से हों, मैं भी हूँ इनमें से, आप भी शायद इनमें से हों। सो सामीन, इसी तरह देखा जाए तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी के लिए किसी एक ऐसे शख्स को सिर्फ एक जुमला कहने का मौका मिले तो आप क्या कहेंगे? मुझे सोचें और सोच के मुझे इस बात का ज़रूर जवाब दीजिएगा। सिर्फ एक जुमला हो, ना लंबी वजाहत हो, ना कोई शिकायत हो, सिर्फ एक जुमला। शायद कोई कहे मुझे तुम्हारी याद आती है, कोई कहे काश हम दोबारा दोस्त बन जाएं, कोई ये कहे कि मैंने तुम्हें कभी बुलाया ही नहीं था, और शायद कोई बस इतना कहे कि मुझे माफ़ कर दो। वो मोहब्बत जो कभी कहीं नहीं जाती, वो मोहब्बत जो कभी कहीं नहीं गई, मोहब्बत जो है वो कितना छोटा सा लफ्ज़ है मगर इसके अंदर जो है वो पूरी दुनिया छुपी हुई है, और मोहब्बत जो है ना वो हमेशा ये नहीं है कि मुझे तुमसे प्यार है, कभी कभी जो है मोहब्बत ये भी है कि आप किसी की खामोशी समझ जाएं, कभी कभार जो है मोहब्बत ये भी कहती है कि आप किसी की परेशानी और उसके बताए बगैर महसूस करें उस परेशानी को, कभी कभी मोहब्बत ये भी कहती है कि आप किसी की खामोशी के लिए ख़ुद को पीछे हट जाएं, और कभी कभी जो है मोहब्बत ये भी कहती है कि आप किसी को दिल से चाहें, मगर ऐसे कभी बताया ही नहीं कभी किसी ने, और शायद आप में से किसी ने कभी भी ऐसा किया हो, आई डोंट नो कभी किया या नहीं, क्योंकि अभी तक मुझे जो है इस तरह से इस रिलेटेड कोई सवाल या कोई जवाब नहीं मुझ तक पहुंचा। किसी क्लास में जो है कोई पसंद था आपको, या किसी दफ्तर में कोई अच्छा लगता था, किसी दोस्त के साथ वक्त गुजारते गुजारते एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है, मगर फिर जो है ना इंसान को डर भी लगने लग जाता है कि अगर बता दिया तो, अगर उसने इनकार कर दिया तो, अगर वो दर्द दूर हो गया तो, और फिर इंसान जो है वो मोहब्बत को अपने दिल में ही दफन कर देता है। सुबह इसी तरह सालों गुजर जाते हैं, जिंदगियां जो है आगे बढ़ जाती हैं, मगर कभी कभी जो है कोई गाना चलता है और वो शख्स दोबारा याद आने लग जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि जब भी किसी इंसान से पहली दफ़ा मिलते हैं आप, तो उसे मिलते वक्त एक तो कभी भी कोई ट्रैक ना प्ले करें, और दूसरा कोई गाना ना सुने, और दूसरा ये कि किसी ऐसी जगह पर मिले जहाँ पर दोबारा आपका कभी जाना हो ही ना।

0: जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, खुश आमदीद करते हैं एक बार फिर से तमाम सुनते हुए समातों को लंच बॉक्स लॉन्च में, जहाँ पर मैंने खूबसूरत सा ट्रैक शामिल किया था और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ट्रैक पसंद भी आया होगा और आपने सुना होगा, महसूस भी किया होगा क्योंकि कुछ मिलती जुलती स्टोरी अपनी ही है। और मैं कहती हूँ कि हमेशा जो है वो कुछ ट्रैक्स ऐसे होते हैं, मतलब ट्रैक्स होते ही ऐसे हैं लेकिन वो उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी कहानी, कोई ना कोई ऐसी बात भी छुपी होती है, किसी मकसद से वो गाना भी बना जाता है। सवाल उसी के साथ साथ चलते हैं हम सामने हमारे टॉपिक की जानिब भी, हम बात कर रहे थे मैं ठीक हूँ के बारे में, ये जो एक जुमला है, दो जुमले के एक जुमला है, खैर इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि चलें अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसको गहराई में लेकर। वो अल्फाज जो हम दिन में शायद हज़ार बार बोलते होंगे कि भाई मैं ठीक हूँ, कभी किसी ने पूछा क्या हुआ, हम कह देते हैं कुछ नहीं, कभी किसी ने पूछा परेशान हो, कहा नहीं बस थका हुआ हूँ। सो कभी वो ये पूछता कि तुम खुश हो, तो कहा ये जाता कि हाँ बिल्कुल मैं खुश हूँ, तो फिर रात को जो है अकेले में वही इंसान जो अपने कमरे में बैठकर सोचता है कि मैं आखिर इतना अकेला क्यों हूँ। कभी कभी जो है हमें हल नहीं जो है वो चाहिए होता, कभी कभी हमें जो है वो सिर्फ कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा इंसान चाहिए होता जो हमें सुन ले बगैर किसी लालच के, बगैर किसी मशवरे के, बगैर ये कहे कि छोड़ो सब ठीक हो जाएगा। कभी कभी जो है हमें सिर्फ ये सुनना होता है कि मैं हूँ तुम बताओ, ये जो चार अल्फाज जाना है ये किसी को टूटते हुए इंसान के लिए जो है पूरी दुनिया उसको उसकी बदल सकते हैं। सो सामीन, मैंने आपसे एक सवाल किया था कि आपने कभी कोई ऐसा मैसेज किसी को किया हो जो आपने बड़े लंबे अरसे से करना चाहो लेकिन किसी को सेंड ना किया हो, तो मेरी बड़ी प्यार सी सामीन है, लिसनर है बड़ी खूबसूरत सी, कल जिन्होंने प्रोग्राम में मुझसे ही सवाल किया था, पाकिस्तान से हमें कराची से सना सुन ली है और सना ने बात हमसे पूछी एक बार फिर से कि आपने कभी किसी को मैसेज लेके अनसेंड किया है। नो, मेरा ऐसा कोई सीन नहीं है शुक्र, बट हाँ मैंने आप तक जो है वो बातें पहुँचाना मेरा काम होता है और अब बहुत सी बातें ऐसी होती है जो मैं कह नहीं पाती, मैं घर से सोच के आती हूँ कि हाँ मैं उधर जाके ये बोलूँगी, ये बात शेयर करूँगी, लेकिन बहुत सी बातें जो है वो मैं भूल जाती हूँ करनी यहाँ पे आके, तो वो बातें जो रह जाती हैं ना उनका मुझे थोड़ा सा अफसोस रह जाता है। लेकिन फिर मज़े की बात बीच में ये भी आ जाती है, हाँ जी, तो मज़े की बात मेरे पे ये भी आ जाती है कि मुझे आपसे कल फिर आके मिल लेना होता है, तो मैं भी कहती हूँ कि सो इट्स ओके, कल आकर उस बात को दोबारा प्रोग्राम में डिस्कस कर लेंगे। सवाल बताइएगा कि आपके लंच बॉक्स में क्या है, ऑफिस की तरफ निकला है, कामकाज की तरफ निकला है, तो दिन आपका कैसा गुजरा, गए ऑफिस में थोड़ी सी अनबन हो गई है बॉस के साथ, तो घबराने की कोई बात नहीं क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें जो हैं वो तो होती ही रहती हैं। आप जो है अपने ऑफिस से थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले लें, ब्रेक लेने के बाद किसी पार्क में या फिर किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, हाँ या फिर आप यूँ कर सकते हैं कि आप बैठे बैठे इधर ही हेडफोन्स लगा लें, हेडफोन्स लगा लेने के बाद आप हमें ट्यून कर लिए, इनके रेडियो फ्यूज़र को ट्यून करें और ट्यून कर लेने के बाद आप हमें अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएं, कोई पैगाम किसी प्यारे के नाम करवाना चाहें तो वो भी करवा सकते हैं, या फिर अपनी कोई फरमाइश पैगाम में प्ले करवाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। पर जो लोग मुझे ड्राइव करते वक्त सुन रहे हैं बी सेफ, बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव कीजिएगा, और जो लोग हमें घर बैठे सुन रहे हैं यानी कि खवातीन जो हमें घर बैठे सुन रही हैं, आप मुझे बताइएगा कि मुझे क्या करते वक्त सुन रही हैं, अगर कोई रेसिपी लेना चाहें, कोई पूछना चाहें या फिर कोई अपनी रेसिपी अपनी कोई राय प्रोग्राम में शामिल करवाना चाहें तो वो भी मुझे बताइएगा, जो चाहते हैं कि मैं आगे अपने सामीन अपने डिस्टेंस तक उनको शेयर करूं। पर उसी के साथ साथ सामीन अभी वक्त एक म्यूज़िक का भी है, लेकिन अभी प्रोग्राम में कमर्शियल ब्रेक भी हमारे दरमियान आए, लोग एडवर्टाइजिंग का भी वक्त आन पहुँचा है, अभी अगला जो मेरा सेगमेंट होता है उसमें जो है मैंने म्यूज़िक ही प्ले करने होते हैं, और आपको अगर कोई म्यूज़िक कोई ट्रैक किसी के लिए प्ले करवाना हो तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा। सामीन अभी तक के लिए सब ये कह देते हैं कि प्रोग्राम में हाल होने लगी एक छोटी कमर्शियल ब्रेक, सो कमर्शियल ब्रेक के उस पार में रहेगी आपसे मुलाकात, और साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास रहेगा, और ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 एफएम को एंड डैक को।
1: इट्स कमर्शियल टाइम। Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। मैं फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम संतरी समातों को रेडियो विजन 87.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज, जहाँ पर मेरा आपका साथ रहता है ठीक ठीक 2 बजे तक। सो उसी के साथ साथ प्रोग्राम में मशहूर बेकार हो चुकी थी, मशहूर बेकस पर मिली रही आपसे मुलाकात, और साथ ही हमारा अगले सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है म्यूजिक का। तो बताइएगा, अगर लंच ब्रेक इंजॉय करते हुए कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहिए अपनी पसंद का तो मुझे लाजमी बता दीजिएगा, और लंच में क्या है ये भी मुझे बताइएगा। और अगर किसी कोलीग का जो है वो लंच आपका खाने का दिल कर रहा है तो मुझे वो भी बता दीजिएगा, उनका नाम लेके मैं जो है थोड़ी सी रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। अच्छा, मोस्टली ऐसा होता है कि जो हमारा लंच बॉक्स होता है ना, उसमें हमें कुछ अच्छा खासा लगता नहीं है खाने में। बेशक घर में हम उसके लिए लड़ते हों कि हमें इस चीज़ को खाना है, लेकिन उस टाइम पे जो है वो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती। उस टाइम पे यही होता है कि दूसरे के टिफिन में क्या है, दूसरे के बॉक्स में क्या है, मुझे उसमें से कुछ खाना है। उस टाइम पे दूसरे के बॉक्स पे इंटरेस्ट होता है अपने से ज़्यादा। सुबह लंच ब्रेक तो हम इंजॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ अभी धमाकेदार ट्रैक की भी एक फरमाइश मेरे पास मौजूद है। धमाकेदार नहीं है, अरिजीत सिंह की आवाज़ है, और अरिजीत सिंह की आवाज़ तो भाई सुनने का अपने मतलब दरख्वास्त ट्रैक का नाम है। इस ट्रैक की फरमाइश आई थी मेरे पास, बोला इस ट्रैक को प्ले करते हैं आपके अपने दरमियान, मुलाकात मेरी रहेगी आपसे इसके इस बार। सो स्टे ट्यून फॉर 97.1 एफएम एंड ऐप, साथ दीजिएगा और साथ होने का एहसास दिलाइएगा।

अगर इन पहाड़ों को कोई पार करता चला जाए तो यहाँ से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान और रूसिया होते हुए

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक, खुशामदीद करते हैं तमाम सुनती जमातों को एक बार फिर से प्रोग्राम लंच बॉक्स लॉन्च पे, जहाँ पर आपका हमारा साथ आया था ठीक ठीक 2 बजे तक। और वल उसी के साथ साथ ट्रैक प्ले किया था एक छोटी सी फरमाइश पे, और इसी तरह एक और फरमाइश मुझ तक पहुँच चुकी है। टाइम बहुत कम है मेरे और आपके दरमियान, तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपकी जो फरमाइशें हैं उनको प्रोग्राम में शामिल किया जाए, क्योंकि हम आपको निराश नहीं करना चाहते। और वैसे भी आपने निराश होकर कहाँ ही चले जाना है, कोई नहीं, हम आपके साथ साथ ही हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी फरमाइश जो मैं पूरी ना कर सकूँ तो आप यूँ कीजिएगा कि हमारी अगली ट्रांसमिशन जो है आपके साथ जारी रहेगी, जुड़ी रहेगी। आप उनसे अपनी फरमाइश का, अपनी ख्वाहिश का इजहार कीजिएगा और अपने पसंद का ट्रैक प्रोग्राम में पे करवाइएगा।

वाला भी गरीब प्रोग्राम में जो हमारे पास फरमाइश मौजूद है उसके प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर मेरी आपसे मुलाकात रहेगी इसके उस पर। सवाल साथ दीजिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। ट्यून करके रखिएगा फजल 97.1 FM को एंड ऐप को।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते हुए समातों पर रेडियो वर्जन 87.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लॉन्च, आवाज़ आप सुन रहे हैं सर आज की, जहाँ पर मेरा आपका साथ आया था ठीक ठीक 2 बजे तक। और वक्त को देखते साथ साथ वक्त हो चुका है ख़त्म, अब तकरीबन जाने का वक्त आन पहुँचा है। और जिन नए लोगों ने आज अभी प्रेजेंट 7.1 एफएम को ट्यून किया, अगर आप वेट करें कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको बता के चली जाती हूँ, कोई बड़ा मसला नहीं है। हमारा नंबर है जिद्दा नंबर 01157100971। इस नंबर को सेव करना है, सेव कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है और बताना है कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं। हमारी बाकी ट्रांसमिशन आपके साथ जारी रहेगी, जुड़ी रहेगी और कल तक के लिए, परसों तक के लिए नहीं बल्कि फ्राइडे के दिन होगी आपसे मुलाकात। तो तब तक के लिए अपना, अपने प्यारों का और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दुआओं के लिए, दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। सो कल तक के लिए नहीं बल्कि 2 दिन बाद तक के लिए मेरा और आपका लाने के बान। अल्लाह हाफिज़।

0: डिनर या टेक अवे रॉयल रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: You are playing Fazan 97.1 FM.

गल सुनगी चंगी लगसी ओह गल तुसा बस हो। तो बहरहाल साढ़ा एक प्रोग्राम ना फॉर्मेट है, साढ़ा एक प्रोग्राम ना तरीकाकार भी है, वो ये है कि असा हर प्रोग्राम एक मौजू कि दसने जिसने अस गलबात करने हैं। मौजू वो एक बुनियादी तौर पर एक बहाना ही होना गलबात करने ना तुसा ना असा अज ना जरा सा मौजू है वह भी बड़ा खास किस्म का मौजू है। जिस तरह पिछले मौजू से उसने भी सुनने बड़ी जबरदस्त किस्म की जी तुसाने तरफों एक कंट्रीब्यूशन रही है, तुसा ना हिस्सा उसने बहुत ही नमाया रहा। ते अज ना प्रोग्राम जड़ा ये भी बड़ा खास प्रोग्राम है। ते पटवारी बैठक जे तुसा फर्स्ट टाइम साढ़े ट्यून किया तो जनाब तुसा साढ़े सुनने पे हो फजा रेडियो 97.1 FM जड़ा कि नॉटिंगम तो लाइव जाना और नॉटिंगम शायर ने सारे एरिया में तुसा साढ़े FM पर सुनी सकने हो। लेकिन अगर तुसा नॉटिंगम तो बाहर होकर रहे तो फिर तुसा साढ़े डैब पर सुनी सकने हो। उस तो बाद रेडियो फजा की अपनी वैबसाइट है उत्थे गच्छी तुसा साढ़े ट्यून करी सकने हो। तजदीद दौर ने तकाजियां की पूरा करने होया फजा टीम जी है वह बिल्कुल सारे नाल बराबर खलती भी। तो असा अगर तुम मोबाइल फोन पर साढ़े सुनना चाहते हो तो वैबसाइट नाल साड़ी एप्लीकेशन है उसने पर भी साढ़े की सुनी सकने हो। तो जनाब ये पटवारी बैठक जी है एक अपनी सुनी वो बैठक है, वह रवायती बैठक जी के पटवार की एक पहचान होनी बल्कि हूँ भी यकीन ने मैं आखन लगा कि पटवार की पहचान थी सी लेकिन यकीन हूँ भी ये पटवार की पहचान है। तो इसने बेहतर तुसा अपनी मर्जी दियाँ गल् बही सकने हो, अपनी मर्जी दियाँ गल् करी सकने हो। तो बैठक जी है उसकी पता ही है कि उत्थे कोई फॉर्मैलिटियाँ या जिसकी आने ना कि बंदा उबहू आने तकल्ला फिजना पो ना यार सीधी खुली डुली गल कर। तो इतने भी इस तरह ही असाने तो कल फिजना पवो जनाब खुली डुली गल पाओ सा जी आखना चाहने हो। तो हम सोचने उसो कि बस भाई क्यों इतना डिले कर रहे अज ने इस मौजू की अनाउंस करने से। असल मौजू अज ना बड़ा खास है तो मैं इस वजह तू चाहना सा कि थोड़ा जहा टाइम किनी तो दसी है कि अज ना जो सा मौजू है वह साढ़े दिल ने बड़े करीब है। अज ना मौजू सा है कि शहर नहीं जिंदगी तो ग्रां नहीं जिंदगी, इन्होंने दोवें क्या फर्क होना तो कि जिंदगी जी है वह कि हिसाबा ठीक होनी। हर बंद ने अपने अपने इस हवाले न ख्यालात होने तो जड़िया चीज़ा साढ़े को असा कोशिश कर सोने सामने रखी है अज नहीं इस नशिस्त अज नहीं इस गपशप। तो शहर नहीं जिंदगी तो ग्रां नहीं जिंदगी क्योंकि साढ़ा ये जड़ा सारा सैटअप है ये परदेस है तो फिर यह नहीं हो सकना कि असा यूके ने शहर तो यूके ने ग्रां की असं भुली जाइए। अज ने इस प्रोग्राम में असा यूके ने शहर यूके ने ग्रां तो पाकिस्तान ने शहर तो पाकिस्तान ने ग्रां हर तरह की जिंदगी ना असा अज एक कहने के तकसा बगौर जायजा किनसा। तो उसने तुसा भी शामिल हो सकने हो क्योंकि यह प्रोग्राम ये पटवारी बैठक जी है ये तुसा नहीं है उसने अस तुसा कॉल करी सकने हो साढ़े की 01157100971। तो जे इसकी मैं पटवारी पंजाबी भी दसा तो 01157100971 तो एक ये साड़ा फोन नंबर है स्टूडियो ना इसने साढ़े की कॉल करो तो तुसा अपनी जी कीमती राय है उस हवाले साढ़े की आगाह करी सकने हो।

ते बाकी संगी हुण सवाल यह है कि जिंदगी कुत्थै सौखी है, कुसै ग्रां विच जिंदगी जिहड़ी आ ओह सौखी होनी या फिर किसै शहरां दी जिंदगी जिहड़ी आ ओह सौखी होनी। इस तरह ने बेशुमार सवाल है जिहड़े साढ़े सोसाइटी ने साढ़े माशरे विच अक्सर गलबात इसने पर सदियां तो चली असनी भी कि लोग कुत्थै ज़्यादा सौखे होने। कई जगह असं तखने आ कि ज़हनी सुकून की असं तरजीह देने आ, तो कई जगह असं सहूलतां की तरजीह देने आ। तो यह हुण इनसार होना इस चीज़ पर कि बंदा किहड़े हालातां विच रहना पिया या फिर उसने कोई और गलबात भी है तो उसकी भी तकी किंसा। तो पहले असं जो गल करिए पाकिस्तान ने ग्रां नहीं मतलब पठवार ने ग्रां नहीं तो उसने तुसेंगी पता है कि एक मिट्टी नहीं खुशबो होनी तो खुले खेत होने जिसकी मैरे भी आखने ते नाल रिश्ते बड़े गूढ़े होने, सारे एक दुए ने सज्जा खब्बे होने नेड़े होने ते बहने आस्ते इस तरह बैठक बनिया होनियाँ डेरे बने होने बेड़िया च लोग बहने ते एक अपना जहा माहौल होना। तो शामी लोग बही तो चाह पीने जिसकी पेशी नहीं चाह होने, वैसे हूँ पेशी ने टाइम हो गया दो तो बाद पेशी ने टाइम ही होना होना तो ग्रां चाह पीने होने। जे तुसा भी चाह शाह लेनी पीती तो को नहीं मसला, मासी ने आवाज़ मारो तो उन्हें कि आखो को चाह शाह रखो साढ़े आस्ते तो मैं भी हसना वा। तो जे तुसा गड्डी ड्राइव करने पे हो तो फिर जनाब को नहीं लोड़ कुसे की आवाज़ मारने नहीं क्योंकि आराम नाल गड्डी चलाओ, तुसा अपना ख्याल रखो तो अगे तको आराम नाल, ओवर स्पीड नहीं होना, बाकी ट्रैफिक रूल्स बिल्कुल उन्होंने वायोलेशन नहीं करनी। हाँ वॉल्यूम थोड़ा जहा भावें सोचा करी सकने हो ताकि तुसा की जी साड़ी आवाज़ है वह प्रॉपर सही असनी रहे। अच्छा जी पाकिस्तान ने ग्रां की गल करने पे, पाकिस्तान ने ग्रामा में जहरी गल है डेरे बैठक ते खुला बेड़ा ते दरख्तानी जड़ी एक छां होनी तूतानी छां होनी दरेकां नी छां ते पिपलां ने बूटे ते बैरियां ते बचपन दियां यादां खेडां होनियां सारियां। लेकिन दुए पासे तकिया ते यूके ने ग्रां जड़े ने उत्थे क्या होना जरा, उत्थे भी जनाब साफ सड़कां होनियां ते सब्ज मैदान होने ते एक खामोश जिहा माहौल होना ते थोड़ियां मुनज़्ज़म सहूलतां होनियां। पाकिस्तान ने ते यूके ने ग्रां ना जड़ा ए थोड़ा जिहा मिकी फर्क लगाओ मैं तुसां गी दस्सिया। तो दुए पास जो शहर होने साढ़े उसने जहरी गल बाजार होने ज्यादा मौके होने अस्पताल होने उत्थै ते कॉलेज होने स्कूल है यूनिवर्सिटियां ही हैं। लेकिन जिथे ऐडा कुछ होना उत्थै नाल रश भी होना तो बेअंगम जी ट्रैफिक भी होनी है। तो जे संगी हूँ यूके ने शहर वाले पास अच्छी है ना तो इसका मतलब यह है इतना पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो जॉब्स नहीं अपॉर्चुनिटियाँ थोड़ियाँ ज़्यादा होनी यूनिवर्सिटी है। तो एक और बड़ी जड़ी खास चीज़ है यूके ने शहर में वो है कि इतने तुसांकी मल्टी कल्चर मिली जाना कि मल्टी कल्चर लोग तुसांकी इतने नज़र हसने न उसने क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों तो मुख्तलिफ कौमां ने मुख्तलिफ मुल्कों ने लोग जड़े न वो इन्हों बड़िया शहरों में आबाद है। लेकिन जिथे इतनी सारिया इसने फायदे ने तो उत्थे यह है कि इस मसरूफियत अक्सर बंदा कला ही होना ते नाल थोड़ी बहुत महंगाई भी होनी। इन सारिया चीज़ों पर गलबात कर सा अज अज असं कोशिश कर सा कि इन सारिया चीज़ों पर गलबात करी ते तो असं तकी है भाई कि जिंदगी जी है वह बेहतर है इन्होंने चौवा जिंदगियों में जड़ियाँ चार तुसें दसियां ने यूके ने ग्रां पाकिस्तान ने ग्रां तो यूके ने शहर तो पाकिस्तान ने शहर। तो जे तुसा इस खूबसूरत गप शप ना हिस्सा बनना चाहते हो तो एक दफ़ा फोन नंबर मैं अपना फिर रिपीट करना 01157100971 यह साड़ा नंबर है, तुसा इसने पर राबता करी सकने हो।

जी जनाब बिस्मिल्लाह करिए जी, एक बार फिर सौगी खुश आमदीद आने तुसाने अपने प्रोग्राम पठवारी बैठक च। ते पठवारी बैठक जेड़ा उसनू सुनने पे रेडियो फजा 97.1 FM अबरू। ते असा असने हुणे हर मंगलारें 2 बजे तो गिनी ते 4 बजे तक रेडियो फजा 97.1 FM उसनू साढ़े की सुनी सकने हो, उसने नाल साढ़े की डैब पर भी सुनी सकने हो। ते संगी दोस्तों असा गल करने पे सा, आज ना जेड़ा साड़ा मौजू है वह है कि शहर नहीं तो ग्रां नहीं जिंदगी, इन्होंने दोवे जिंदगी में केड़ी जिंदगी जी है वो ज़्यादा बेहतर है और कुसने विच ज़्यादा चस आनी है, कुत्थे ज़्यादा ज़्यादा सुकून आना। तो उसने असा गल करने पे सा जनाब ग्रां नहीं जिंदगी है, पर ग्रां जड़ा है ना वो आखिर क्या होना, जिसकी उर्दू च गाँव आखने हो। ग्रां जनाबे आली सिर्फ आने वो जगह नहीं होनी जिथै खाली खेत हो, ते ग्रां दा असल मतलब ये होना कि जिथे लोग जड़े न वो एक दूए की जानने हो, एक दूए नाल उन्होंने तलक बढ़ाइया पिंडा जा ते पक्का जा तलक होवे। ते पाकिस्तान ने ग्रां विच सों तक्या होसी कि हर बंदा दूए बंदे की जानना होना, मतलब अगर एक ग्रां विच 70-80 घर है, 40 घर है, 30 घर है, ते सारे कोस कुसै की जानने होने, एक दूए नाल उन्होंने चंगी सलाम दुआ होनी, घर विच आना जाना होना, गमियां खुशियां ने मौके पर इकट्ठे होने, ते एक ऐसा तलक होना एक जिसकी आने ना कि अज ने दौर जी उन्होंने सोशल लाइफ है वह बड़ी इं पक्की ते भिंडी किस्म नहीं होनी, तो अपनाइयत होनी एक दूए ना दुख दर जरा वो शेयर करने होने। ते जे इसने मद्दे मुकाबल असा यूके नहीं इतने ग्रां नहीं लाइफ तखने हाँ तो उत्थे कम्यूनिटी हाल होने, इन्होंने कल्चर ने मुताबक ते इसने च लोकल पब्स होने, चर्च होने, ते कम्यूनिटी ने मुख्तलिफ ईवेंट जड़े न वह भी इतने होने, स्पोर्ट्स क्लब बने होने और इस तरह दी चीज़ा जड़ियाँ इन्होंने मतलब के सोसाइटी ने लिहाज न ज़्यादा इफेक्टिव होनी, ते मतलब काफ़ी सारिया चीज़ा जड़ियाँ वो इक्के जीयां, बहुत सारा इतना खास फर्क को नहीं, लेकिन जे तुसां गी इक उसने विच फर्क दसी है तो उस फर्क ना जनाब यही है कि पाकिस्तान जिसलै लोग आने ना कि चलो जी चाह पीण जुलने आ, अच्छो जी चाह पीण जुड़ी है, तो इत्थे आने न लैट्स मीट फॉर अ कॉफी, इतना ज्यादा डिफरेंस है। ते अल्फाज मुख्तलिफ होई सकने, इंसान की जरूरत जड़ी है वो इक्कै जी होनी है, ते वैसे क्योंकि जहरी गल है बंदे जड़े पाकिस्तान रहने या मुख्तलिफ दुनिया ने कोने च रहने, उन्होंने कोशिश होनी कि वह आपस एक दूए नाल कनैक्ट रहन, एक दूए की कहने ना कि जोड़ी तो रखन। ते इंसानियत ना अक्सर यही है कि बंदा एक दूए ने कम अच्छा है तो फिर ही कोई गल जी है वह बननी है। बहरहाल जरा सी फर्क दसिया वो यही है कि पाकिस्तान जो तक सुबह सुबह ग्रां ना मंजर होना, पठवार ना ग्रां सौ कोई सोचो अपना जिस ग्रां में पैदा हुए हो कि सवेरे सारे तो पहले तुम की जी आवाज़ दसनी ना वो मसीतियाँ जाने की आवाज़ दसनी, तो उस तो बाद या उस तो पहले ही हो सकना कि तुमने घर ना जो अपना कुकड़ आना उए बांग चाहिए वो आख्या कि लो जी सवेर होगी, तो बंदे की पता ले जाना भाई हूँ जी सवेर होगी कुकड़ बोली पे, ते फिर उस तो बाद जिन्हें माल डंगर रखे होना वो अपना माले डंगर ना दुध शुद्ध चौसन, ते माले डंगर की जे तो बाहर खोली ते अंदर कुसै करना होना तो कुसै बाहर बनने होने, कुसै खोली ते कसै आले पासे छोड़ने होने, ते कोई जनाब सवेरे फिर नाश्ता करसी अपना देसी घ्यो नाल, ते नाल पराठे, ते नाल फिर उसने उपर बाया मक्खन, ते नाल फिर होनी जनाब मजी ने दुद्ध नहीं चाह, ते क्या बात है। ते नाल चाह होनी, तो फिर तक खेतों में कोई निकली जाना इस सवेरे ना जरा सवेरे सवेरे ने फटीकों होनी या सवेरे सवेरे ने कम होने वो इस तरह ही होने, बहुत जल्दी सवेरे नहीं जी जी ग्रां की जिंदगी है वह लोगों ने शुरू हो जानी। तो फिर उस तो बाद कोई तंदूर है रोटियां लाना पाया, फिर कोई बुजुर्ग बेही जाने आप गल्ला शल्ला पाने, तो कुरै बच्चों दी रोने दी आवाज़ा हसनिया, कुरै हसने दी आवाज़ा हसनिया, ए करे जी मेला जहा लगा होना, तो या कोई इस तरह भी हो जाना। ये भी तक हूँ साड़ी जी उत्थे नहीं एक क्या उसके आने के सकाफत है उसना हिसाब है, बाहर जोड़े फेरी वाले उसने वो आवाज़ा मारने होने, कोई चान बुरे लाया वा कोई क्या आया, हूँ उसने जो बाने में साढ़े की कोई शर्म महसूस नहीं होनी, क्यों क्योंकि यह सारा कल्चर है ना, यह सारिया गल्ला बातें, तो यह जरूरी कि असा इसकी परदेस इसमें पता कि यह गल्ला सारिया बंदे की भुली भुलाई जानी थोड़िया बहुत, असा ने जोड़ा यह प्रोग्राम है उसका मकसद भी यही है कि असा उन्होंने चीज़ों की दोबारा तुसा नाल जोड़ने की कोशिश करिए, या एक याद आनी ने तौर पर चलो बंदा खुश हो जाए यार माड़ी बचपन नहीं याद सी, तो इस प्रोग्राम में अगर मजीद जल्द असा जा सा तो और इस तरह दी चीज़ों की भी असा नाल डिस्कस कर सा। त
ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਪਠਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੀ ਜਾਣਨੇ, ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗਮ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੀ ਗੱਛੀ 'ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਛੀ 'ਤੇ ਖਲਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਜਿਸਕੀ ਜਾਣੇ ਨਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਸੋ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣ, ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਪਹਿਲੂ, ਮਨਫੀ ਪਹਿਲੂ ਵੀ ਆਉਣੇ, ਜਿਸ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਸਕਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮਨਫੀ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੋਣੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੇ, ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਈ ਸਕਣਾ ਉਹ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਜਦੀਦ ਸਿਹਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੋਣਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਆਹਣੇ ਨੇ ਗਲੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁੱਲ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਕਮੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਮਸਾਇਲ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਲੀਮ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਰੁੱਖ ਕਰਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਬੈਰੂਨ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਣੇ।

ते जनाब हुन जिल्लै ग्रां दी गल होनी शहरां दी गल होनी ते चलो मैं आखां कि अच्छा जिहा गीत जिहड़ा उस संगी सुनाने आ, उस तों बाद फिर वापस अच्छी तरह अपनी गपशप की इत्थों ही शुरू करने आ। ते कुरै ना जाए, गीत इंजॉय करो, पिपला नी छां ते कदी बह जावे, बहुत ही प्यारा गीत है, बहुत प्यारा गीत है, जदू सुनो ना अदू सुरूर आना है।

हाँ जी जनाब, जग भावें दो है असां एक होके रहना है, क्या बात जनाब। अच्छा जी, तुसां सुनने पे सो पिपला नी छां जी, ते मैं आ तुसां अपना मेज़बान सोना भरा एक दफा फिर तुसां गी आना खुश आमदीद। तुसानी अपनी बैठक पटवारी बैठक च, ते साढ़ा जेहड़ा अज ना मौजू है वह है शहर नी जिंदगी ते ग्रां नी जिंदगी। ते उसने ते शहर और ग्रां नी जिंदगी जेहड़ी है वह यूके ने ग्रां ते पाकिस्तान ने ग्रां ते यूके ने शहर ते पाकिस्तान ने शहर, इन्हां नाल आपस च असां इक गलबात करने पे इस उपर। ते जे तुसां साढ़ा हुणी प्रोग्राम ज्वाइन कीता ते असां तुसां गी जी आयां नूं आने आ जी, कोई मसला नहीं जनाब, वेलकम। जिस टाइम अच्छो असां बिल्कुल अपना क्या आने के बाह खोली ते तुसां असां खलते हैं। ते साढ़ा जेहड़ा टेलीफोन नंबर है वह 01157100971 है, जिसने पर कॉल करी ते अज ने इस खूबसूरत मौजू उपर गलबात करी सकने हो। ते मैं क्योंकि साढ़े प्रोग्राम ने जरा तकरीबन 45 मिनट साढ़े प्रोग्राम ने गुजरी चुके, ते आज इस सिलसिले की असं थोड़ा जहाँ अगर बधाने की कोशिश करने हैं कि गल करने पैसा कि जितने इंसान की मौका मिलना उत्थे वो चला जाना, ग्रां के लोग जड़े वो शहर आले पास जाने, तो शहर ने लोग जड़े उन्होंने बाद औकात दुए मुल्क जाना पी जाना। अच्छा हूँ तालीमी बारे नाल अगर गल करिए, तो जेहड़े पाकिस्तान ने ग्रां है अगर उस उत्थे असं तखने आना, तो स्कूल जेहड़े ने वो कई जगह मौजूद होने पर जेहड़ी आला तालीम होनी जिसकी कॉलेज आखने या यूनिवर्सिटियां आखने, उसने असें जेहड़े बच्चे वे उन्होंने जाना पैना बड़े शहरों का रुख करना पैना, पिंडी हो गया, इस्लामाबाद हो गया, कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस तरह ने जो बड़े शहर है उसने उन्होंने जाना पैना। तो जे पाकिस्तान ने शहरानी असा जिस टाइम गल करने हैं उत्थे तालीम ने लिहाज नाल यूनिवर्सिटियां भी थे या कॉलेज भी थे, ते कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूट भी है न, हर तरह की एक तालीमी जड़ी सहूलत है वो मौजूद होनी है। ते हूँ क्योंकि जारी गल है ग्लोबल विलेज है और भी तालीम हासिल करने ने काफ़ी जराए होने, तुसा मोबाइल फोन पर ते अपनी जड़ा स्किल लेवल है या अपना जड़ा तालीम ना तुसा ना कोई मायार है उसकी तुसा बेहतर करी सकने हो, क्योंकि उसने तुसा कि किसी भी तालीमी अदारे ना सिर्फ मोहताज नहीं होना पैना, बल्कि तुसा घर बैठे भी चाहे तुसा दीनी तालीम हासिल करने पे हो या तुसा ना जड़ा कोई ऐसा फन है जिसना ट्यूटर जड़ा वो अमेरिका विच बैठा हुआ, जिसना ट्यूटर जड़ा वो यूके विच है या उसना उस्ताद जड़ा वो किसी फन वो किसी और कंट्री विच है। अक्सर लोग ऑनलाइन काम करने हैं जड़े कि ऑनलाइन क्लासेस किन्ने वो पेड होनी बेशक या कुछ फ्री कोर्सेज भी होने, लेकिन उसना एक फायदा जड़ा वो इंसान की ये होना है कि इंसान आज के दौर अपना स्किल लेवल जड़ा वो अपर करी सकना। तो असा गल करने पे पाकिस्तान ने शहरों में यूनिवर्सिटियां ते कॉलेज ते प्राइवेट इंस्टीट्यूट मौजूद है वो बच्चे अपनी तालीम हासिल करने करने ने, लेकिन जिसले उन्होंने इस तू ही एक बेहतर उन्होंने कुछ नज़र रसना कि असा कि इस तू ज़्यादा कुछ सीखना चाहिए, तो वह तालीम के सिलसिले में बाहर मुल्क का रुख भी करने, जिसने जिथे असा बैठे हैं इंग्लैंड इतने भी लोग हसने, तो इस तू बाद अमेरिका, कैनेडा या यूरोप ने मुख्तलिफ और जड़े मुल्क है उत्थे भी पाकिस्तान ने पठवार ने बच्चे जड़े ने वो जाने। अच्छा हूँ असं दुए पास गल करने हैं जी, जेहड़े यूके ने ग्रां है उत्थे स्कूल की सहूलत जी है वह काफ़ी बेहतर होनी है पाकिस्तान ने ग्रां को, इसने तो कोई शक नहीं और एक मुनज़म जड़ा उस की निज़ाम नज़र रसना। तो लेकिन हायर एजुकेशन जी है जारी गल है ग्रां ने अंदर क्योंकि इतनी आबादी नहीं होनी और ये जो हायर एजुकेशन ने इंस्टीट्यूट बनने होने ये लोगों की सहूलत ऐसी जगह पर ही बनाए जाने कि जिथे ज़्यादा लोग ईजीली उसकी पहुँची गए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, हर तरह की सहूलत उसने नज़दीक हो, तो इस वजह तो ये जड़े बड़े मराकज कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटियां हो गई, उसने लोगों की जड़ा ना वो बाहर हसना पैना, अपना घर अपना कहने के ग्रां जड़ा वह छोड़ना पैना। लेकिन इतना एक सवाल यह है कि बेहतर जिंदगी ना मतलब जड़ा वो सिर्फ यह है कि बंदे कोल आला तालीम होवे या बंदे ना एक खुशहाल ते असना खेड़ना बचपन होवे।
ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਗਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੋੜਨਾ ਪਈ ਕਿ ਛੇ ਤਾਲੀਮ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਸਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਂ ਨੇ ਵਿਲੇਜ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਸਟਲ ਲਾਈਫ ਹੀ ਉਹ ਚੂਜ਼ ਕਰੀ ਗਿਆ।

अच्छा जी, यूके ने जेड़े शहर होने उत्थे जहरी गल है पाकिस्तान ने शहरां और यूनिवर्सिटियां पाकिस्तान नालों काफ़ी बेहतर और एक अच्छा तालीमी निज़ाम है और क्योंकि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटियां ने बड़े जिसके आने ना तरक्की याफ्ता मुल्क है तो इतने दी सहूलतां तो उन्होंने कोई आप कंपेरिजन कोई नहीं काफ़ी सारिया चीज़ा ना मतलब है कि मुख्तलिफ है तालीमी लिहाज न तो सामने आख सकने क्योंकि जड़िया दुनिया दी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूरोपियन कंट्रीज हैं और यूके जारी गल है एक ऐसा मुल्क है जड़ा इस टाइम बल्कि पिछले 100-200 साल तो ही दुनिया ने नक्शे पर वो मुल्क है जिसना एक खास असर है जड़ा कि हर लिहाज न चाहे तालीम होवे चाहे साइंस होवे चाहे सोशल चीज़ा हो या पोलिटिकल चीज़ा हो उसने पर यूके ना एक इन्फ्लुएंस है और इस वजह तो इसना जड़ा फायदा है वह यूके रहने वाले लोगों की इस वजह तो होना कि जो यूके रहने वाले शहर के लोग के उन्होंने बहुत घट चांस होने कि वह किसी होर कंट्री जाने लोग इतों अमेरिका जाने लेकिन उन्होंने जी तादाद होनी वो इस तरह नहीं होनी कि जिस तरह हम पाकिस्तान एक बच्चा जिसलै वो थोड़ा जहा तगड़ा होना तो अगर कोई उसना रैलेटिव इतना है तो उसने कोशिश होनी कि चलो यार मैं किसी तरीके यूके मूव हो गचा उत्थे बेहतर रुजगार ने मौके भी है तालीम उत्थे नहीं बेहतर है तो यूके क्योंकि खुद एक तरक्की याफ्ता मुल्क है तो लिहाजा इतने दी जड़ियां सहूलतां वो बड़िया बेमिसाल हैं तालीमी लिहाज न बाकी संगीत दोस्तों गलबात जी वो साड़ी चलनी पी आज ने इस खूबसूरत प्रोग्राम ना अगर हिस्सा बनना चाहने हो तो साड़े की कॉल करी सकने 01157100971 साड़ा फोन नंबर है तो हूँ टाइम होया तुसा कि जनाब सुनाने पटवारी ने माहिए तो जरा तुसा तक है ना तुसा ना पसंदीदा माहिए जड़ा वो केड़ा वै चला मेरा जी डोला ते वापस आने जनाब सुन चले सुनो ते बस दो चार मिनटा की गल है फिर दोबारा कंटिन्यू करने अपनी गपशप।

जी संगी दोस्तों एक बार फिर संगी आने जी खुश आमदीद अपना प्रोग्राम पटवारी बैठक जड़ा के लाइव सुनने होने फजा रेडियो 97.1 FM उपरू ते नाल सुन डैप उपर भी साढ़े किस सुनी सकने हो तो दसिया जी कि हूँ साढ़े प्रोग्राम ना जड़ा वो एक घंटा है वह गुजरी गया अज ना जड़ा साड़ा प्रोग्राम है वह बहुत ही जबरदस्त साड़ी गुफ्तगू जारी सी एक बड़े खास मौजू पर जड़ा कि साढ़े और तुसा ने दिला ने बड़ा करीब है कि ग्रां की जिंदगी बेहतर होनी या फिर शहर की जिंदगी लेकिन अज ने इस मौजू बच्चे असा अज ने प्रोग्राम तो असा एक ऐसा काम शुरू करने पे जो सा इस प्रोग्राम ना सैगमेंट है कि उसका ना है पठवार ना माण पठवार ना माण होना के जिसने पर तुसा कि जिसकी आने ना के कई दफ़ा माऊ प्यो की औलादी पर बड़ा माण होना तो कई दफ़ा औलादी की तो हमेशा ही मा प्यो चंगे लगने होने तो एक इस तरह ना एक चोली दामन ना साथ है तो कुछ बंदे ऐसे वे जिन्हें पठवार ने सही महीनों में खिदमत की जिन्हें पठवार ने ना उच्चा किया तो असं कोशिश कर सके अपने इस फजा रेडियो जरा सा FM 97.1 है उसने वसीले नाल उसने तवसत नाल असं अज ने इस प्रोग्राम तो एक ऐसा सैगमेंट शुरू करिए जिसने पठवार ने माण ने ना तो गिनी तो अज की शख्सियत जी है उन्होंने अस गलबात कर स ते लिहाजा तुसा थोड़ा जा अपने इस वॉल्यूम की ऊंचा करी किनो ताकि तुसेंगी भी पता लगे कि पठवार आस्तै जड़ा सब तो पहले अगर किसी बंदे अदबी लिहाज नाल कम किया तो उस शख्सियत ना नां कैसी उन्होंने क्या खिदमात हैं तो संगी दोस्तों गल इस तरह है कि पठवार नी मिट्टी विच बहुत सारे शायर फनकार पैदा होए मगर कुछ आवाज़ा ऐसिया सन कि जड़ियाँ वक्त गुजरने के बावजूद खामोश नहीं हुई तो अज असा गल करसा पठवारी ते उर्दू ने अजीम शायर बाकी सदीकी मरहूम औरानी ते बाकी सदीकी औराना तलक ज़िला रावलपिंडी ने इलाके साम नाल सी ते उर्दू पंजाबी ते पठवारी ज़बान च उन्हें शायरी की थी असल ना उन्हें मुहम्मद अफजल कुरैशी सी असल ना उन्होंने मुहम्मद अफजल कुरैशी सी ते उन्होंने जी तारीख पदायश है उसने च इख्तलाफ मिलना है तारीखी मामलात जिले अस तकने ते कुछ ऐसिया वैबसाइट्स हैं कुछ ऐसे जगह अदबी हल्के जड़े 1905 उन्होंने आखने कि उसने उन्होंने पैदायश हुई तो कुछ जगह पर लिखा हुआ कि उन्होंने पैदायश 1908 च हुई बहरहाल असा इस चीज़ की साइड पर रखी तहत असा ये तकसा कि उन्होंने जी इब्तदाई जिंदगी है वो ना एक अपनी तालीम मुकम्मल करने तो बाद शोभा तदरीस नाल वो वाबस्ता हुई गए तो बाकी स्थिकी और तबीयत जी है वह इस तरह नहीं ऐसी कि वह एक किसी शोभे नाल खास जुड़ी तो नहीं रहे एक होना बंदा किस कोई काम शुरू करना तो वह उस कमें ना ही होते रही जाना बल्कि

चलो बहरहाल सुनियो कोई गल नहीं, तुसेंगी इक ट्रैक सुनाने आ। ट्रैक आस्तै तुसां अपनी फरमाइश जेह्ड़ी है ओह् भी करी सकने हो। ते अज्ज ना जेह्ड़ा साढ़ा एह् ट्रैक है, एह् है जनाब नईम हज़ारवी गाया सोहनियां अक्खियां। ते सोहनियां अक्खियां यकीनन सोहनियां ही होनियां।

0: जी जनाब, सोनिया अखियां यार दियां सुनने बिसो। जी संगीत दोस्तों, मैं सुना अपना मेज़बान सुना भ्रा बस्त अली राजा एक बार फिर सुना की खुश आमदीद आना जी। रेडियो वजा 97.1 FM पर सुन साढ़े की लाइव जड़ा वो सुनने पे हो ते साड़ा प्रोग्राम पटवारी बैठक जड़ा वो तकरीबन एक घंटा तो 24 मिनट साड़ा प्रोग्राम हो चुका ते आलमोस्ट 36 मिनट जड़े 36 मिनट साढ़े अज इस प्रोग्राम रही है। तो साड़ा अजना जड़ा मौजू है वह है प्रदेश ने साड़ा जड़ा अजना मौजू है वह है जनाब के ग्रां नहीं और शहर नहीं जिहड़ी जिंदगी है उसने जो चंगी जिंदगी कुत्थे बंदा बसर करी सकना। तो मुख्तलिफ चीज़ा असं गल कीतियां ब्रेकअप जाने तो पहले असं जिहड़ी गल कीती सी ओह इह कीती सी कि खुराक खाने पीने पर असं गलबात करने पे सां कि किहड़ी चीज़ जिहड़ी है वह कुत्थे चंगी लभनी। तो बहरहाल हुण इस तों बाद गल करने आ जनाब के रिश्ते खानदान ते कम्यूनिटी इस ना क्या फर्क है ग्रां ना और शहर ने जिंदगी विच कितना ही किसने च फर्क एक आम बंदा महसूस करी सकना। तो कुछ ग्रां की जिंदगी जिस गल करने तो ग्रां की जिंदगी इस तरह होनी कि अगर एक ग्रां में 40-50 घर है तो वह सारे एक दूए की जानने होने सारे एक दूए नाल काफ़ी ज़्यादा नेड़े नेड़े होने करीब करीब होने तो एक दूए ने उन्हें ना पता होने उन्होंने बच्चों ने ना पता होने उन्होंने बजुर्गों ने ना पता होने उस एक दूए ने शजरा तक जानने होने भाई फलाना फलाने ने पुत्र है फलाना फलाने की धी है फलाने ने जड़ा ना विह उतू होया वा तो उतए चाचे मामे सारे की जानने होने एक दूए की। तो ये बड़ी खूबसूरत गल है क्योंकि इस ना एक फायदा यह होना सा कि दुख सुख सारे जड़े ना वो जल्द कोई किसी एक पर मुसीबत हसनी किसी ने घर कोई फोतकी हुई कुछ है तो सारे ग्रां ने घर समझो फोतकी हुई भी वह इस तरह एक दूए की वो नेड़े हुई तो तखने तो जे शादी होवे तो खुशी ने मौके भी सारे एक दूए नाल रलने जो कोई बीमार होवे तो सारे पुछने से भी घर घर हसने ये मतलब उत्थे नहीं हूँ तक नहीं एक जिसके आने ना कि प्रैक्टिकल रवायत है एक प्रैक्टिस होनी भी इस तरह ही। जहरी गल है इस तरह कम्यूनिटी लाइफ जी बड़ी मजबूत होनी तो इसने बेशुमार फायदे ने बंदा कलेपन का शिकार नहीं होना लेकिन जिते बेशुमार फायदे हो उत्थे मनफी गल जी है वह भी होनी तो असं क्योंकि किसी भी चीज़ ने दोए रुख जड़े वो साढ़े तुसने सामने रखना यह साड़ी जिम्मेदारी है तो मनफी गल होनी कि प्राइवेसी जी है वह बंदे की घट होनी अजकल ने जदी दौर जल्द असं तखने जी नवी नसल है वह प्राइवेसी डिमांड करनी है अपने पेरेंट्स को या फिर अपने घर को तो चीज़ जी है ग्रां की लाइफ इस जिते मतलब है कि सारे एक दूए की जानने होने या काफ़ी ज़्यादा इनवॉलमेंट कई दफा ज़्यादा हो जानी उसने नाल फिर जेडे अजकल ने बच्चे न वो उत्थे जिसके आने ना कि अनकंफर्टेबल हो सकने। तो हूँ जे यूके की लाइफ की असं गल करने ना तो यूके ने जो ग्रां हैं इन्हों मतलब के रिश्ते आने वाले नाल कुछ चीज़ा हैं कम्यूनिटी सेंटर बने हुए इन्हों मतलब है कि इंटरटेनमेंट आस्ते कुछ ना कुछ इन्हों बनया हो सी लेकिन इन्होंने जी फिर भी एक प्राइवेसी है वो इतने बरकरार है इन्होंने जोड़े कनैक्शन होने लोगों एक महदूद हद तक होने मतलब बहुत ज़्यादा जोड़ा सा एशियन कल्चर है उस नो काफ़ी ज़्यादा तरीका है डिफरेंट ही होने। अच्छा संगी एक ब्रेक ना टाइम होया उस तो बाद फिर वापस आने तो किरण जाए
1: Planning a wedding, reception, or special celebration? Discover Excelsior Nawab, Nottingham's brand new renovated banqueting venue. A beautifully designed indoor marquee concept featuring sparkling traditional chandeliers, stunning LED lighting throughout, and elegant decor.
2: Enjoy venue hire, tables and chairs with table linen, chair covers, centerpieces, stage and walkway decor, a delicious three-course meal, drinks, professional waiter service, and a dedicated supervisor on the day.
1: Fully air-conditioned, with modern kitchen facilities, a spacious foyer reception area, located just 1 mile from Nottingham City Center at 5-7 Lourdes Road, NG51EL.
2: Excelsior Nawab. Where your special moments become unforgettable.
3: Hit music, entertainment, poetry, news, and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

जी संगीत दोस्तों, एक बार फिर संगी आने जी खुश आमदीद सुनने पे सुना अपना प्रोग्राम पटवारी बैठक जरा कि लाइव जा रहा है नॉटिंगहम यूके तो अज ना सा जरा प्रोग्राम है वह बड़ा ही खास मौजू भी नहीं आए सा मौजू अज ना यह है कि ग्रां की जिंदगी चंकी है या फिर शहर की लाइफ चंकी होनी शहर की जिंदगी चंकी होनी। तो जी मैं थोड़ा मेजबान बास्तरी राजा अगर सोनी साढ़े की ट्यून किया तो चलो कोई गल नहीं तो चलो कोई गल नहीं जनाब अगर उन्हें चून किया तो फिर भी जी आया नू जनाब सा कि सत बिस्मिल्ला कोई मसला नहीं तो असा यह पटवारी बैठक जी है हर मंगलवारें दो तो गिनी शामी चार बजे असा लाने होने तो अज ना सा जो प्रोग्राम है वह भी इस तरह एक सिलसिला। तो असं गल करने पिसा पाकिस्तान ने ग्रां ते यूके ने ग्रां वाले नाल जड़े इंसानी रवैये वे या बंदे आस्ते जड़ियां कुछ चीज़ां बंदे फील करने न पाकिस्तान ने ग्रां पिसों की गल दसी सी कि उत्थे बंदे एक दूए ने बहुत सारे नेड़े होने ते नेड़े होने ने जिथे फायदे होने उत्थे नुकसान भी होने नुकसान होने के बंदे की प्राइवेसी जी है वह भी कहने के डिस्टर्ब होनी। वैसे कुछ लोग पुराने लोग इस गल की माइंड नहीं करते लेकिन अजकल ने जदीद दौर नहीं एक गल है तो यह तुसाने सामने में रखी है। तो बाकी बहरहाल यूके ने जो लाइफ है उसने च यूके ने जो ग्रां है उसने च प्राइवेसी तो थी लेकिन बंदे की एक तनाई ने शिकार बंदा होना है कि कई दफ़ा यह भी हो जाना कि इत्थे लोग जड़े वो दूआ बंदा लौड़ने होने कि कोई बंदा माड़े गल करे उसनी एक जिंदा मिसाल शायद यह भी है जी माड़ी अपनी अंडरस्टैंडिंग है वो है कि असं दखने के लोग अक्सर अपने घर पैट्स रखे होने कि उन्होंने की उसनी एक वजह यह भी होनी कि उन्होंने उनसीयत उन्होंने कुछ ऐसी बनी होनी। बहरहाल जरा लॉनलीनैस है या तनाई है उसने पर असा एक अलग पूरा प्रोग्राम जरा करी सकने तो अगर सुनना चाहते हो इस प्रोग्राम तो तुम जरूर अपनी राय जी दे सकने हो साढ़े की कि इसने साढ़े की प्रोग्राम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हर जगह नहीं एक अपनी रिक्वायरमेंट होनी कई जगह ऐसा होनी कि जितने तुम कि प्राइवेसी मिलनी लेकिन उत्थे रिश्ते नहीं होने तो कई जगह रिश्ते बहुत नेड़े होने तो बंदा थोड़ी जी प्राइवेसी मंगना होना। हर बंदे ने अपना एक कंफर्ट जोन है हर बंदे ने एक अपना लाइफ स्टाइल है उसने भी अपने आप है कि बेहतर एडजस्ट करी सकता। तो जे असं ग्रां की गल करिए पाकिस्तान ने ग्रां की गल करिए तो यह नहीं हो सकना कि असं बजुर्गों की गल ना करिए पाकिस्तान के जो बजुर्ग होने ना वो खानदान ना मरकज होने कोई दादा रे दादी है नानी है नाना है तो दोतरे पोतरे सारे सज्जा खब्बे उन्होंने होए होने तो कुछ घर बजुर्गों की जरा वो बरकत नहीं अलामत समझा जाना है और यकीन होने भी है क्योंकि उन्होंने वजह तो ही उन्होंने एक जिंदगी बड़ी मुश्किल तकी होनी उन्होंने अपने बच्चों की किसी न किसी जाई खिलाया होना एक औखे वेले अपने बच्चों की पालिया होना ने तो बच्चों की जी है ना वो भी एक कोशिश होनी है कि जरा सा एशियन कल्चर है उसने बीच के वालदैन की वो अपने नाल रख तो ये एक साढ़े सोसाइटी ने उसन है। तो बड़े बंदे ने जो तजर्बा है वो उसने नालूमी लोग फायदा चाहने तो वैसे मैं सुन कि एक गप सुनाना इसने बीच के ये स्याने बंदे नहीं गल है चलो गप्पा चु गप आई तो मैं चलो इस तरह से सुनाई छोड़ जड़े पुराने बुढ़े बंदे होने ना उन्होंने मैं सोच दसना कि उन्होंने जी दानिशमंदी होनी उसनी एक मिसाल है ये गल सची है या मतलब वैसे कहानी बनी भी लेकिन सबक इसने कुछ ना कुछ जरूर है साढ़े आस्ते वो आने कुसै जाई कई कु बंदे सुनना तो उन्हें कुसै दुए ने पास रिश्ता किया ना तो लेकिन उन्हें कुड़ी वाले ये शर्त रखी पाई असा कुड़ी नहीं जंज वापस तां टोर सा जे तुसा कोई भी बुढ़ा बंदा जड़ा ना वो अपने नाल नहीं आना लगे सारे जवान हसने चाहिए तो या फिर सारे बच्चे हसने चाहिए मतलब बच्चे तो जवान हो बुढ़ा बंदा कोई भी ना हो उन्हें आख्या यार ये तो नहीं हो सकना उन्हें आख्या अगर ये नहीं हो सकना तो फिर असं सुन के रिश्ता ही ना देने जाओ गल खत्म होगी बहरहाल मजबूर से बेचारे उन्हें वापस अच्छी तो अपने बजुर्गों गल की जो घर ने व्डे से उन्हें आख्या यार इस तरह वो ये आखने पे तो हूँ दसो क्या करिए उन्हें आख्या ठीक है तुम इस तरह करो कि तुम उन्हें कि हामी भरी छोड़ो कि ठीक है असं कोई भी बुढ़ा बंदा नाल ना आने लेकिन होया इस तरह वा कि बुढ़ा बंदा उन्हें हामी भरी छोड़ी जंजा ने दिहाड़ा आया जंज चढ़ी तो जंज उत्थे चली भी की तो बंदे उन्हें जड़े न वो जंजा नाल खड़े से पंजी जंजे बंदे उन्हें जो जंजा नाल खड़े से वो पंजी बंदे से तो उत्थे गए तो जल्द उन्हें पता लगा भाई
हर बंदे आस्तै उन्ना एक एक बकरा जेह्ड़ा ना ओह् रक्खेआ वा। उन्हें आखेआ कि जिचरा जियां तुसां एक एक बकरा नहीं खाने, इचरा जियां असां सोनी जान जेह्ड़ी है ना वह वापस ना भेजनी। हुण वह बंदे सारे फसी गए, उन्हें आखिया यह क्या चक्कर हो गया साढ़े नाल। लेकिन उन्होंने एक सियाणा बंदा सी, उस आखिया यार इस तरह करो ना कि एक अद बावे की नाल की निकलो, एक अद बावे की उन्हें कुसै बैगे शैगे छुपाया या कुसै घैने पुराने वक्त की गल सी कहता हूँ कुछ छुपाया। ते ओ उस बैगे आले पासे दौड़े ना, तो बावे कोल गच्छी पुछया ने बावे रही आने बावा जी ये दसो ये हुण रौला बनी गया, उन्हें पंजी बकरे आंदे वे तो आने के तुसा जिहड़ा ना पंजी बकरे जे जे नहीं खाने इचरा जिहा तुसा जंज ने वापस करी सकने। तो पंजी बंदे तो पंजी बकरे खाना ये सौखी गल नहीं, औखा काम आ। तो हूँ सियाणा बंदा उत्थे उन्हें नाल सी ना, उस आख्या कि चलो ठीक है सुननी शर्त भी मनी किनो। तो उन्हें की आखो पंजी बकरे असं खासा, लेकिन तुसा एक काम करो कि एक टाइम है जिकी बकरा कोयो ते एक असं खाई रहसा, तो फिर तुसा दूआ बकरा जड़ा ना वह तुसा साढ़े सामने उसनी देग आननी है। हूँ सियाने बंद ने सियाणी गल् होनी जिसलै उन्हें लादा लादा खाधे जारी गल होनी, एक बंदा एक टाइम है तो पंजी बकरे नहीं खाए, एक एक बकरा नहीं खाई सकना। लेकिन जिसलै बंदे होन पंजी तो बकरा होवे एक तो वह कुत्थे जाना। बहरहाल जनाब एक गप सी जी सौगी सुनाई है कि सियाणा बंदा जरा उसना सोनी जिंदगी होना बड़ा जरूरी है, किसी बजुर्ग ने हर बजुर्ग ने एक अपना किरदार होना। तो कई दफ़ा इंसान अजकल ने जदीद दौर थोड़ा जहाँ जिसके आने ना तंग भी पी जाना, लेकिन ये इंसानी जिंदगी ना इंसान असाने लोग असाने जरा विरसा न साढ़े वालदैन साढ़े बजुर्ग नाना दादा तो ये जितना टाइम उसने स्पेंड हो गया लाजमी गुजारिया करो।

बहरहाल जनाब, यादां ते हमेशा साथ रहनी है इंसान ने। ते हुण तुसां की सनाने हैं जनाब, पठवारी माई ते प्रोग्राम साढ़ा तकरीबन 12 मिनट रही गए, ते उस तो बाद माइयों तो बाद वापस इख्तामी गुफ्तगू कर सां। वापस असने अकुरा नगर च पटवारी बैठक की।

जी जनाब, हमें लड़िया ना कर, उजड़ जासे माइया। जी संगीओ, एक दफ़ा फिर सौंकी खुश आमदीद आने जी सुना अपना मेजबान बास्तरी राजा। प्रोग्राम ने आखिरी हिस्से बच्चे एक दफ़ा फिर सौंकी खुश आमदीद आखना जी। तो साड़ा प्रोग्राम जोड़ा वो अपने अख्तामी कहने वक्त आए पास रवान दवान है। बहरहाल एंड पर कुछ ऐसिया गल्लां करने आं, कुछ ऐसे सवाल है जिहड़े तुसां आस्तै छोड़ी दे जाने आं कि जिन्होंने जवाब अगर तुसां अपने दिलै विच या किरिया अपने जहन ने किसे एक कोने विच सोच सो थोड़ी देरी आस्तै, तां तुसां की यकीनन इस गल्लै नी। तो जनाब सवाल यह है कि पाकिस्तान ना ग्रां या यूके ना ग्रां कुत्थै ज़्यादा सुकून जिहड़ा बंदे की लभी सकना, ते केड़ी सहूलत है जिहड़ी पाकिस्तान या यूके ने ग्राएं विच तुसां तकने पे हो, जिथे रहने पे हो सुहाने हो जरा, अगर ये कम हो गया छे ना तो बहुत वधिया हो जा सी। ते जे तुसां कोल इतना पैसा हो गया छे, रोजगार ने मसले सारे हल हो गए छन, ते बाकी जिंदगी तुसां कुत्थे गुजारना चाहने हो? बच्चों की परवरिश जी है वो ग्रां में ज़्यादा चंगी हो सकनी या शहर ज़्यादा चंगी हो सकनी? तो जे तुम रिटायर हो जाओ तो क्या तुम वापस अपने ग्रां अपने शहर जाना चाहो तुसा या नहीं? संगी दोस्तों, आज ने प्रोग्राम में असा पाकिस्तान ने ग्रां भी तके, तो यूके ने ग्रां भी तके, तो पाकिस्तानी शहरी जिंदगी, तो यूके की शहरी जिंदगी भी असा तकी, तो असा तकिया पाकिस्तान ने ग्रां में अपना पन है उत एक अपनाई है, तो सारिया बरादरियां फैमलियां इकट्ठे होने सारे उत। तो यूके ने ग्रां में मुनजम इंतजाम है, तो सुकून है, पर जिहड़ी गल है वह है कि कुछ मसाइल भी थे पाकिस्तान में, प्राइवेसी ने मसला होना, तो यूके विच जिसके आने तनाई ने शिकार हो जाने, इंग्लिश ही जाने, लोनलीनेस हो जानी। तो हूँ इतना सवाल यह नहीं कि सब तो बेहतरीन जगह केड़ी है, बल्कि सवाल यह है कि सब तो बेहतरीन जिंदगी केड़ी है, वह जिंदगी जिथे बंदा कम भी अपने खानदान ने विच करे, अपने खानदान की टाइम भी दे, तो बंदे की सेहत भी चंगी होवे, बंदे की जिंदगी सुकून भी होवे, बंदे ने बच्चे उसना अहल वयाल वह भी महफूज हो, बंदे ने बच्चे अहल वयाल भी महफूज होण, ते नाल बंदा अपना आप भी ना भुले। वैसे बड़ा मुश्किल काम है कि बंदा अपना आप ना भुले, क्योंकि असा जदू भी जल्ले बाहर हसने हाँ तो साढ़े आस्ते सब तो बड़ी मुश्किल सब तो बड़ी कड़ी साढ़े आस्ते ये होनी। तको ना एक पासे यूके साढ़े की मुस्तकबिल देना, तो दुए पासे पाकिस्तान नाल साड़ियाँ यादा वापसतन, तो प्रदेश की जिहड़ी जिंदगी है इन्हां दोवां दरम्यान एक पुल ना किरदार अदा करनी होनी।

0: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
0: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
4: This is a public service announcement.
5: Everybody. The station. That plays
6: foot tapping music.
7: You are listening 97.1 FM.

और जी मोहब्बतों से गुंदे और यकीन से बंधे रिश्तों के साथ एक बार फिर से मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त फाखरा मिर्जा। जी हाँ, मेरा सलाम आप सब तक पहुँचे। सलाम पेश करती हूँ, आधा पचा लाती हूँ और यकीनन आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। और आज का ये गर्मा गर्म सा दिन कैसे गुजरा आप सबका? मुझे तो आज बहुत मज़ा आया, मुझे ऐसा लगा कि जैसे दोबारा से समर स्टार्ट हुई और मौसम वापस पीछे की तरफ गया। क्योंकि कुछ दिन पहले हमें यह एहसास हो रहा था कि सर्दियां आ गई हैं और हमें दोबारा से वही स्वेटर, कोट्स, स्कार्फ्स और पता नहीं क्या क्या कुछ पहनना पड़ेगा, लेकिन मौसम ने एकदम से करवट बदली और हमें अच्छा लगा कि अभी कुछ हल्के फुल्के से कपड़ों से ही गुजारा हो जाया करेगा। इंसान हल्का फुल्का रहने में बहुत कंफर्ट फील करता है, उसे एक अच्छा एहसास होता है, लेकिन जो ही उस पर कोई वज़न रख दिया जाए, हैवी उसके ऊपर कोई चीज़ आ जाए, कोई लिबास हो जाए, कोई उसका पर्स जो है, उसका हैंडबैग वो ज़्यादा हो जाए, कोई बोरी कोई तोड़ा, कोई कुछ भी उठाना पड़े ना, तो उसे बड़ी एक दिक्कत सी होने लगती है। सो जी, हमारी सर्दियां जो यहाँ की होती हैं उनमें भी हमें बहुत हैवी कपड़े, भारी चीज़ें पहननी पड़ती हैं और पूरे 4-5 महीने वो इतना वज़न उठा के चलने में दिक्कत तो होती ही है। आज का मौसम और यकीनन अभी कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ ऐसा ही मौसम रहेगा और हम मौसम को भरपूर तरीके से आप सबके साथ मिलकर इंजॉय करेंगे और साथ साथ रेडियो फ़ज़ा की लाइव ब्रॉडकास्ट आप सुनेंगे। जी हाँ, और 97.1 FM को ट्यून किया कीजिए और बहुत सारी बातें, और बातें तो हमेशा हम तसल्ली ही से करते हैं। तो जी स्टूडियो में बासित अपना प्रोग्राम पुटहारी शो पेश करके गए हैं। बहुत शुक्रिया बासित, आपने एक अच्छा, एक बहुत ही उम्दा सा प्रोग्राम पेश किया और यकीनन अच्छे से टॉपिक्स होते हैं, बहुत सी मालूमात होती है और पुटहारी लिसनर के साथ साथ हमारे दूसरे लिसनर जो हैं वो भी बहुत बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं और बहुत उन्हें मज़ा आता है जी ये शो सुन के। ये शो अपनी नौइयत के बड़े अलग से शो होते हैं, इनके अंदर इलाकाई गीत, पुटहारी ज़ुबान और फिर इन ज़ुबानों के, उन उस कल्चर के और उन फोक गीतों के बस कुछ अपने ही मज़े होते हैं। सो जी, सुनने वालों को मज़ा आता है और लोग क्या करते हैं, लोग इन्जॉय करते हैं और फिर कॉल्स करते हैं। सो जी, इन प्रोग्राम्स में कॉल ज़रूर किया कीजिए क्योंकि ये आप सब ही के लिए तरतीब दिए जाते हैं। स्टूडियो का नंबर 0115-710-0971, इंटरनेट के लिए www.radiofaza.org.uk। और जिंदगी जब भी तेरी बज में लाती है मुझे, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है मुझे।

क्या बात है जी, जाने बहारा रश के चमन, गुंचा दहन शीरी बदन, खूबसूरत जी हाँ गीत जब भी सुना अच्छा लगा, चाहे रीमिक्स हो या असल हो। कुछ गीत ऐसे होते हैं जो कि सदा बहार होते हैं, और कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कि हमेशा ताज़ा दम रहते हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें जब जब सुने ऐसा महसूस होता है कि जैसे ये आवाज़ कहीं गुम हुई ही नहीं थी, हमेशा की तरह फ्रेश ताज़ा दम। इसीलिए कहते हैं ना कि चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने का हुनर, अगर उससे हम सब वाकिफ हो जाएं तो वो एक जो मुस्कुराहट होती है ना, वो बहुत सारे लोगों को हंसने पर मजबूर करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अंदर बेशुमार हबस का मौसम हो, अंदर दर्द से भरा हो और आप चेहरे पर मस्में मुस्कुराहट बिखेर कर चलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। समीन, आज लोगों की भीड़ में जिनको देखो वो कुछ अरसे बाद नजर नहीं आते, तस्वीरें निकालो एल्बम के सफ़ों पर तो वो मौजूद होते हैं, हमारे घरों की दीवारों पर फ्रेम में मौजूद होते हैं, लेकिन असल में नहीं होते। ये दुख इंसान को उदास तो किए रखता है, लेकिन इस दुख से निकलने के लिए जिंदगी से भरपूर बातों पर तवज्जो देनी चाहिए। एक मुस्कुराहट, एक कह कहा, उनके नाम जो हमसे बिछड़ गए जुदा हुए। क्योंकि वो कभी हमसे बिछड़ते नहीं, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारी यादों में, हमारी बातों में, हमारी आंखों में और हमारे दिलों में।

और ये प्यारा सा गीत ओरिजिनली रेशमा जी ने गाया था। कमाल खूबसूरती से गाने वाली रेशमा जी, जिनको सहराओं की मलका भी कहा जाता था, पाकिस्तान फोक म्यूज़िक की बेहतरीन गुलकारा रेशमा जी, जिनका रेडियो फ़ज़ा से इंटरव्यू भी किया गया। आज वो हमें मौजूद नहीं, लेकिन उनका कोई भी गीत, कोई भी गाय कहीं पर भी सुना जाए, रेशमा जी की याद और उनका वो सादगी से भरपूर चेहरा और सरापा हमेशा हमारी आंखों में रहता है। ये वो लोग थे जो कि हमारे मुल्क की पहचान थे, हमारे मुल्क का हिस्सा थे, शनाख्त थे एक।

0: और सामिन क्या कहते हैं कि लंबी जुदाई,
1: लंबी जुदाई,
0: जुदाई के अंदर भी मेरे रब ने, मेरे रब कायनात ने क्या कमाल खूबसूरती, हुसन और दिलकशी डाल रखी है। हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत ही कीमती, यकीन कीजिए कि ये बहुत कीमती है, क्योंकि इसके में ये रब कायनात की देन है। हमारी ज़िंदगी में गुजरने वाला हर पल खूबसूरत है, नायाब है, अहम है, और इन पलों में अगर हमारे पास खूबसूरत आँख और खूबसूरत दिल हो जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि खूबसूरत आँख और खूबसूरत दिल से दुनिया को देखना पड़ता है। और अगर खूबसूरत आँख और खूबसूरत दिल इंसान के पास हो तो हर चीज़, हर मंज़र खूबसूरत दिखाई देता है।

कुछ ऐसा ही हमारे नॉटिंघम का मौसम भी था आज, बहुत ही मस्ताना सा, महबूबा की तरह दिलावेज हंसी और नरम गरम सा मौसम आज हमें मिला। यकीन कीजिए कि आज का दिन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मौसम अच्छा था। मौसम जब अच्छा होता है ना तो अंदर का मौसम भी अच्छा हो जाता है, और कभी कभी अंदर का मौसम अच्छा ना हो तो बाहर के मौसम कितने ही खूबसूरत क्यों ना हो, अंदर के मौसम को ठीक नहीं कर सकते। नॉटिंघम के इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा रोड वर्क्स हो रहे हैं, सो जब भी काम से निकलें, बच्चों को लेके स्कूल की जानिब जाएं या स्कूल से या कहीं पर भी, तो कोशिश करें कि वक्त से पहले निकलें क्योंकि बहुत सारी जगहों पर रोड वर्क्स हो रहे हैं और ट्रैफिक, वहाँ पर जैम मिलेगी, कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाएं, और अगर लेट हो गए तो फिर क्या होगा, फिर आपको पनिश मिलेगी, दीवार के साथ एक टांग पे खड़ा कर दिया जाएगा। जब हम सब छोटे होते थे तो लड़कों को अक्सर ऐसी सजाएं मिला करती थी कि उनको उनके फादर, उनके अब्बू या उनके टीचर जो थे वो एक टांग पे दीवार के साथ खड़ा कर दिया करते थे, और कभी कभी उनको मुर्गा बनाया जाता, कभी उनको कुर्सी टेबल है ना, कभी डंडे से मार पड़ रही है। ये लड़कों को ही क्यों मार पड़ती थी हमें आज तक समझ नहीं आई। लड़कियां कितनी भी शरारत कर लें वो बच जाया करती थी, लेकिन लड़के छोटी सी शरारत कर लें या किसी बहन या कज़न की शिकायत, चाहे वो सच्ची हो चाहे झूठी हो, उनको मार ज़रूर पड़ती थी। ये बेचारे मासूम से लड़के इतनी मार खाने के बाद ही शायद इतने स्ट्रांग होते हैं कि ज़माने के साथ साथ अपने घर वालों के साथ भी गुजारा कर लेते हैं। लेकिन इतने साल, इतने टाइम गुजरने के बाद अब हमें उन पे तरस आ रहा है कि शायद वक्त पलट जाए और हम उनकी कुछ हेल्प कर सकें।

और अली डरबी से आप सुन रहे हैं, मैसेज आपने भेजा, बहुत शुक्रिया अली, हमेशा शामिल होते हैं और टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए ही। कह रहे हैं कि आज डरबी में भी मौसम बहुत अच्छा था, और अली उसके साथ अलीना आपने सिनेंटन से टेक्स्ट किया, और आपका भी कहना जी कि ट्रैफिक रोड वर्स की वजह से काफ़ी जगहों पर हमें काफ़ी देर इंतज़ार करना पड़ रहा है।

0: और जी कभी शाम डले तो मेरे दिल में आ जाना। समय कहते हैं ना कि खूबसूरत आँख और खूबसूरत दिल से दुनिया को अगर देखा जाए तो हर चीज़ हर मंजर खूबसूरत दिखाई देगा। हमारे घरों की खिड़कियाँ हमारे लिए फ्रेश मंजर और ताज़ा हवा पेश करती हैं।
1: कभी
0: घर में खिड़की के सामने बैठकर बाहर के मौसम, बारिश, हवा, धूप, बादल, ये सब देखने का एक अपना ही मजा है। और फिर अपने प्यारों के लिए, अपने चाहने वाले, अपने किसी अच्छे दोस्त के साथ चाय पीने का एक अपना ही मजा है। ये वो लम्हात होते हैं जो बहुत ही कीमती होते हैं, लेकिन वक्त की धूल में, या जैसे कि लोग कहते हैं कि जमाना बदल गया है, आज किसी के पास इतना वक्त नहीं रहा कि वो खिड़की से लगकर बाहर के मंजर को देर तक देखता रहे, ताज़ा हवा को महसूस कर सके, बाहर के मौसम में जो फूलों, फलों, पत्तों, दरख्तों की खुशबू होती है उसको महसूस कर सके, या किसी अपने प्यारे के साथ बैठकर आराम और सुकून के साथ चाय और पकौड़े खा सके, या किसी को सिर्फ इसलिए दावत दें कि आप आएं आज बाहर बैठकर थोड़ा सा मौसम को, वक्त को और चाय को एंजॉय करते हैं। क्या इंसान कभी ये सोचता है कि आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास ये लम्हे, ये घड़ियाँ, ये वक्त आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से निकल रहा है? और वक्त जिसको हम बेवफा कहते हैं, जिससे हमें हर वक्त शिकायतें रहती हैं, वो तो दीवार के साथ लगकर हर रोज़ घंटे घंटे के बाद, हर सेकंड के बाद हमें बताता है कि मेरा काम चलना है और तुम्हारा काम है वक्त की नफ्सों को पकड़ लेना, थाम लेना, रोक लेना।

और कभी वक्त की नबज पर हाथ रख कर देखिएगा, आपको कुछ महसूस होगा। वो हल्की सी मध्यम सी चलती हुई नब्ज़ पर कभी अपना हाथ रख कर देखिएगा और वक्त की नब्ज़ों को रोक कर देखिएगा। दिल को खूबसूरत रखें और इस छोटी सी ज़िंदगी को आराम और सुकून के साथ गुजारने के हुनर से पूरी तरह से वाकिफ हों। यकीन कीजिए, जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। कभी शाम ठहले तो मेरे दिल में आ जाना, मगर आना इस सदा से कि यहाँ से फिर न जाना। एक खूबसूरत रिक्वेस्ट। और कितने लोग हैं जो इस खूबसूरत सी अदा को, इस खूबसूरत सी रिक्वेस्ट को कबूल करते हैं, क्योंकि हमारे पास तो वक्त ही नहीं होता। और वक्त का काम भागना है, दौड़ना है, हमारे हाथों से निकलना है। सो वक्त को मोड़ते हुए एक प्यारा सा गीत गजाला, जो कि पीटर ब्रा में सुन रही हैं, शीशा हो या दिल हो, ये प्यारा सा गीत उन्हीं के नाम करते हैं। और यकीनन गजाला, आप हमें बताएंगे कि आपने इस गीत को सुना।

जी हाँ, आखिर टूट जाता है, है ना। और क्या कहते हैं कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, और शीशे के टुकड़े भी जब होते हैं तो समेटे नहीं जाते, किरची किरची होकर कैसे बिखर जाता है। और फिर इंसान डर के कितने दूर भागता है जब शीशा टूटता है, है ना। मेरे तो इर्द गिर्द जब भी कोई शीशा टूटे तो मैं तो कोसों दूर भाग जाती हूँ और जल्दी से हुवर निकाल के ले आती हूँ कि हुवर उसके छोटे छोटे ज़र्रों को भी अपनी तरफ खींच लेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो कहीं किसी को भी शीशा लग सकता है। सो जी, ये रेडियो फ़ज़ा पर आप सुन रहे हैं मुझे, और मैं हूँ फाखरा मिर्ज़ा। एक बार फिर से आप सबको शामिल करती हूँ जिन लोगों ने अभी अभी मुझे सुनना शुरू किया।

और जो लोग टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हैं उनके मैसेजेस भी शामिल करेंगे। डॉक्टर फरीद चौधरी हमेशा पंजाबी गीत की फरमाइश करते हैं और अपनी मसरूफियत में से भी वक्त निकाल कर शामिल होते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका, अली आपका, गजाला आपका, मिर्ज़ा भाई आपका और अलीना आपका भी शुक्रिया जो शामिल हुई। और शेराजी साहब आपने कहा कि पहली बार आपके प्रोग्राम में टेक्स्ट मैसेज कर रहा हूँ और प्रोग्राम तो बहुत बार आपका सुना लेकिन कभी हिम्मत नहीं हुई। बहुत शुक्रिया शेराजी साहब आपका भी। और जो लोग खामोशी से सुन रहे हैं उन्हें भी यही कहेंगे कि नंबर 0115710971 उस पर आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। समीर इब्ने इंशा, जी हाँ, उनको कौन नहीं जानता। एक बहुत प्यारा सा कलाम उन्होंने लिखा था कि अब उम्र की नकदी खत्म हुई, अब हमको उधार की हाजत है। है कोई जो देवनहार बने, है कोई जो साहूकार बने, कोई साल नहीं कुछ पल लोगो, बिन सूद ब्याज के सुन लोगो। उसको लिखने और बहुत कुछ उन्होंने लिखा, अफसाने लिखे, शायरी लिखी और इब्ने इंशा के बारे में अहमद बशीर का कहना है कि इब्ने इंशा ने बड़ी सोच विचार से इश्क किया था। और ये मुमताज़ मुफ्ती, जी हाँ, उनकी कहानी रूखे लोग से इक्तबास है। बहुत प्यारा सा ये छोटी सी एक स्टोरी थी जो कि मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहती हूँ और इब्ने इंशा के बारे में बताना चाहती हूँ कि इब्ने इंशा ने जब मोहब्बत की तो कैसी मोहब्बत थी उनकी और कैसी महबूबा का चुनाव किया उन्होंने, जो कि पहले ही किसी और की बीवी थी, किसी और की हो चुकी थी, शादीशुदा थी और बच्चों वाली थी, जिसके दिल में इंशा जी के लिए कुछ भी नहीं था, ना कोई जज्बा हमदर्दी थी और ना ही कभी उसने जज्बा हमदर्दी को पैदा करने की कोशिश की थी। लेकिन इब्ने इंशा थे कि वो उस पर मर मिटे, उन्हें उसकी अदाएं, उसकी गुफ्तगू, सभी कुछ बहुत अच्छा लगा। और ये वो महबूबा थी जिससे मिलने के तमाम रास्ते बंद थे। अपने इश्क को पूरे तौर पर महफूज कर लेने के बाद उसने इश्क के सांस पर एक नगमा, एक नया नगमा, एक नया ख्वाब देखना शुरू कर दिया। इब्ने इंशा को बहुत सारे मौके तो मिले मगर इंशा ने कभी महबूबा से बात ना की, क्योंकि उन्हें हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि एक शादीशुदा बच्चों की माँ के साथ वो बात करें। अक्सर अकड़ कर अपने दोस्तों से कहा करते, यार उसे कहो मुझसे बात कर लिया करे। और उस लम्हा उसके अंदाज में बड़ी मन्नत होती और आजसी होती और फिर आशिक का जलाल जाग जाता जब वो अपने दोस्तों से कहा करते कि उससे कहो कि वो मुझसे बात कर लिया करे। तो उस लम्हा इब्ने इंशा के मिजाज में बड़ी आजसी होती, इनकसारी होती और वो कहते कि देख इससे अपनी बात ना छेड़ना, यानी कि उसके साथ मेरी बात ना करना, वो अपने दोस्तों से कहा करते थे। समीर इब्ने इंशा की महबूबा कुछ तेज थी और बड़ी ही समझदार थी और दुनियादार भी थी। पहले तो वो इब्ने इंशा की बातों को सुनकर उनका मजाक उड़ाती रही, फिर इब्ने इंशा की दीवानगी को काम में लाने का मनसूबा बनाया और उस दिशा में शिकले में अपने मियाँ को भी शामिल कर लिया। और जब अपने मियाँ को शामिल किया तो उसके बाद वो क्या करने लगी, स्टेट यूनियन रेडियो फजा 97.1 FM। जी हाँ, आपको बताते हैं कि इब्ने इंशा की महबूबा शादीशुदा थी, बच्चों वाली थी और उनका इब्ने इंशा की तरफ ज़रा भी ध्यान नहीं था, लेकिन इब्ने इंशा की दिलचस्पी को देखते हुए उन्होंने अपने मियाँ के साथ मिलकर एक प्लान किया कि किस तरह से इब्ने इंशा को बेवकूफ़ बनाया जाए। फिर क्या होने लगा, जी होने ये लगा कि अब इब्ने इंशा को फरमाइशें मौसूल होने लगी अपनी महबूबा की, जिस कामयाबी पर इब्ने इंशा बहुत खुश हुए और फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी महबूबा का ध्यान उनकी तरफ चल पड़ा है।
دوستوں نے یہ دیکھ کر ابن انشا کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ انشا سنبھل جاؤ، وہ تمہیں بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور ابن انشا اپنی شاعرانہ طبیعت میں لہک کر کہتے کہ کم از کم مجھے کچھ بنا تو رہی ہے نا، یہ بھی تو ایک تعلق ہے، تم مجھے اس تعلق سے محروم کیوں کرنا چاہتے ہو؟ سادگی دیکھیے ابن انشا کی کہ ان کی محبوبہ ان کو اپنے میاں کے ساتھ مل کر پھول بنا رہی ہے، لیکن شاعرانہ طبیعت تھی، مزاج کے صحیح تھے، تو انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا کہ کچھ بھی ہے، وہ مجھے کچھ بنا تو رہی ہے نا، میرے ساتھ ایک تعلق تو اس نے بنا لیا۔ تو کیا آپ لوگ اس تعلق سے مجھے محروم کرنا چاہتے ہیں؟ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ایک روز جب وہ فرمائش پوری کرنے کے لیے، ابن انشا اپنی محبوبہ کی فرمائش پوری کرنے کے لیے شاپنگ کرنے بازار گئے، تو ان کے دوست لکھتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ گیا، میں نے انشا جی کی منتیں کی کہ اتنا قیمتی سامان مت لو، تمہاری ساری تنہا اپنی محبوبہ کے سامان کو خریدنے میں لگ جائے گی۔ لیکن ابن انشا نے ایک بھی نہ سنی اور مسلسل اس کی لسٹ کے مطابق شاپنگ کرتے رہے، اور تب ابن انشا فرمائش ان کی پوری کرنے کے بعد، ساری چیزیں خریدنے کے بعد اپنے دوست سے بولے کہ مفتی جی، تمہیں پتا نہیں کہ اس نے مجھے کیا دیا ہے، اس نے مجھے شاعر بنا دیا، شہرت دی، زندگی دی۔ اور یہ کہتے کہتے ابن انشا کی آنکھوں سے آنسو چلک پڑے، کیونکہ وہ شاعر تھے، دنیا دار تھے، اور انہیں ایسا لگا کہ یہ شاپنگ کی لسٹ بھی ایک تعلق ہے۔ کیسے لوگ تھے، کمال کے لوگ۔ اور اتنے چھوٹے سے تعلق کو بھی کتنا اہم تعلق سمجھ لیا۔ تو یہ تھے جی ہمارے ابن انشا، جنہوں نے لکھا تھا کہ ابو عمر کی نقدی ختم ہوئی، اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے، ہے کوئی جو ساہوکار بنے، ہے کوئی جو دیون ہار بنے، کچھ سال نہیں کچھ پل لوگوں، بن سود بیاج کے

और जी वक्त को जाया किए बगैर क्यों ना एक प्यारे से गीत की जानिब आपको लेके जाया जाए, जो गीत गाया लता जी ने, और लता जी द ओनली वन, लता जी एक ही आवाज जिनके गले में कहा जाता है कि भगवान बोलता था। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, ओल्ड इज गोल्ड।

जी प्यारा सा गीत आपने सुना, ओल्ड इज गोल्ड। जी हाँ, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। रेडियो फसा 97.1 FM पर, और जी हाँ इस वक्त खूबसूरत सा शाम का पहर, हमारे प्रोग्राम का वक्त बदला। जितने भी लोग सुन रहे हैं उन्हें बताते चलें जी के 4 से 6 बजे तक आप सुना करेंगे धुन और दास्तां। जी हाँ, धुन और दास्तां हमारे साथ। और जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है मुझे, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है मुझे,

जी सुन साहिबा सुन, प्यार की धुन और दास्तां में यही कुछ तो आपको सुनने को मिलेगा। और जब भी आप कुछ सुने बस उसको याद रखा करें, है ना। जैसे कि हमने पहले मिर्जा भाई को एक बात सुनाई थी कि प्रवीण क्रिस्टोफर से एक बात हमने सीखी और वो हमारे लिए क्या बन गई, मिशेल राब बन गई। उसे हम हमेशा अप्लाई करते हैं अपने साथ। छोटी छोटी बातें जो हमारे इर्द गिर्द होती हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा जाती हैं, और ये सीखने का अमल तो जारी रहना चाहिए। किसी भी चीज़ को इग्नोर मत किया करेंगे, बस ये उसकी आदत है उसको करने दें। अच्छी आदतें अपनाने में कोई बुराई नहीं है। दुख और तासुफ की हकीकत को तस्लीम करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं है ये हम सब जानते हैं, और ज़िंदगी से हमारी शिकायतें तो हर रोज़ चलती रहती हैं। कभी बच्चों की सूरत में, कभी वालदेन की सूरत में, कभी रिश्तेदारों की सूरत में, कभी हमसायों की, और कभी अपने आप से बहुत ज़्यादा शिकायतें हो जाती हैं। और ज़िंदगी नापायदार है ये भी हमें कबूल करना होगा, क्योंकि हर एक की ज़िंदगी में खुशी और गम के मुख्तलिफ अदवार आते ही रहते हैं। हम बिल्कुल ये नहीं जानते कि कब लोगों का खुशी या गम से वास्ता पड़ सकता है। ये वो राज हैं जो हम में से किसी को किसी पर जाहिर नहीं और किसी से छुपे नहीं हैं।

और जी क्या कहते हैं कि बहुत सारे गीत हमारे सामने हैं इस वक्त और कुछ प्लेलिस्ट भी है। डॉक्टर फरीद चौधरी जी, हाँ, आपने एक पंजाबी गीत की फरमाइश की, बहुत देर से इंतज़ार में हैं और इस गीत के बाद अगला गीत आपकी नज़र होगा। आप भी कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर शामिल हों। इस गीत से पहले एक प्यारा सा गीत जिसको मैं अपनी प्यारी सी बिटिया मेहरू के नाम करना चाहती हूँ। बेटियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं, माँ बाप के दिल की क्या कहते हैं कि धड़कन होती हैं, लेकिन जब बड़ी हो जाती हैं तो उनको रुख्सत करना पड़ता है और ये रुख्सत करना कोई इतना खुशी भी होती है और दिल भी चाह रहा होता है कि उनके अपने घर हों, अपने घरों की हो जाएं, लेकिन रुख्सत करते हुए पता नहीं क्यों एक गिरा सी पड़ जाती है, उदासी सी हो जाती है, घर उदास हो जाते हैं, उनके कमरों को देखकर दिल दुखता है, उनकी घर में पड़ी बिखरी चीज़ों को देखकर दिल बहुत उदास होता है और फिर माँ बाप क्या कहते हैं कि मैं माँ हूँ और मेरी किस्मत जुदाई है। ज़्यादा दिन नहीं गुजरे कि मेरी गोद की धीमी हरारत तुझे आराम देती थी और तू एक ही करवट में सारी रात बिताती थी और फिर क्या हुआ, स्कूल, बस्ता, टीचर्स सब कुछ तेरे साथ चले और तू दुनिया के नक्शे में रंग भरने के लिए मेरी उंगली छोड़कर आगे बढ़ती गई। और फिर एक दिन क्या हुआ कि एक शख्स आया, एक लड़का आया, एक खूबरू शहजादा आया और तुम्हारा हाथ थाम कर मुझसे आगे ले गया और फिर मैं माँ थी और मेरी किस्मत जुदाई थी। कुछ ऐसी ही सोचें आती हैं वालदेन को और ये प्यारा सा गीत मैं अपनी प्यारी सी बेटी के नाम करती और यकीनन ढेर सारी दुआएं भी उसके लिए और उन सब बेटियों के लिए जो कि अपने माँ बाप के घरों से रुख्सत हुई। इस दुआ के साथ के खुश रहें, आबाद रहें और जिस घरों में जाती हैं, कहते ना कि एक टहनी पे फूल खिलता है और फिर दूसरी शाख को जाके वो हरा करती हैं, कुछ ऐसा ही होता है।

जी ये प्यारा सा गीत हमने किया महरू के नाम, जी हाँ महरू, जी हाँ हमारी प्यारी सी बेटी के नाम। ये गलियां ये चुबारा, यहाँ आना ना दोबारा, लेकिन हम तो ये कहेंगे कि वो आए और जी हाँ बार बार आए, क्योंकि कहते हैं ना कि लड़कियों के जो अपने शहर, अपनी गलियां, अपना उनकी दोस्तें और अपने माँ बाप के घरों की जो खुशबुएं होती हैं, वो कभी भी वक्त गुजरे, हालात बदलें, जो भी हो जाए, वो बूढ़ी हो जाती हैं, लेकिन अपने मेके की मोहब्बत हमेशा उनके दिल में एक कसक बन के रहती है। और मुझे भागी भरी भरी चूड़ियाँ, ढेर सारी दुआओं के साथ ये रेडियो फजा है और 97.1 FM पर। वक्त की तब्दीली यकीनन आप सबने नोट की होगी कि हमारा प्रोग्राम 4 से 6 बजे तक आप हर ट्यूसडे को सुना करेंगे। और एक प्यारा सा गीत जिसकी फरमाइश डॉक्टर फरीद चौधरी आपने की, यकीनन सुन रहे प्रोग्राम को, काफी देर से आप इंतजार में थे, सो पार चना दे दिसे कुली यार दी, एक प्यारा सा क्लासिकल कोक स्टूडियो का ये गीत है जो कि ख़ास तौर पर आपकी नज़र करते हुए अपने प्रोग्राम को आगे की जानिब लेके चलते हैं। और मैं अकेली ही चली थी जानिब मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। मिर्ज़ा भाई शुक्रिया अदा करती हूँ आपका कि आप ऑन एयर आए, बहुत सारे हमारे प्रेजेंटर्स को, बहुत से लिसनर्स को याद किया। और यकीनन इसी तरह से कहते हैं ना कि याद रखने वाले हमेशा याद रखते हैं, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो कि सुन रहे हैं, टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहे हैं। शकील आप ही सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आपका मैसेज शामिल करेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर फरीद चौधरी जी, हाँ आपकी फरमाइश।

तुसें इस परिवार का हिस्सा बनो और अपने हफाजती बैल्ट जो बनी गिनो और एक परिवार दौरान बनने वाली है और जितने भी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं फॉलो करो जी, बिल्कुल साढ़े नाल रहो, साढ़े नाल जुड़े रहो। माड़े तो पहले बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश किया जा रहा जी, फाखर आप ही तरफों माशाल्लाह क्या बात है उन्होंने, और हमेशा ऑलवेज बहुत ही अच्छा प्रोग्राम पेश करने और अल्लाह उन्हें जिंदगी दिया है। एंड ऑलवेज मैं रस्ते चश्नी हूँ उन्होंने प्रोग्राम सुनना सा और मजा आशना है। जड़ी उन्हें गल माड़े हवाले की है, माड़े बारे की है, उस ना मैं उन्होंने बहुत शुक्रिया गुजार हाँ। ये आला शख्सियात ही एक दूसरे प्रेजेंटर ने बारे इतनी तारीफ करनी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फाखरा अबी, एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। तुसा सुनी रहो रंगे कश्मीर, जियो कश्मीरी हो।

उम्मीद करना जितने भी प्रोग्राम असानी इस रेडियो चैनल की तरफ पेश किए जाने तुसा सारियां की सुनने भी उसे और लुत्फअंदोज भी होने उसे और मजा भी अच्छा उसी और जितने भी प्रोग्राम पेश किए जाने तुसा वास्ते साड़ी कम्युनिटी वास्ते किए जाने 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year बिल्कुल जी 24 घंटे 7 दिहाड़े त्रै पूरा साल थ्रू आउट असा तुसा वास्ते डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम आने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कवर किए जाने उम्मीद करना तुसें इसी अप्रीशिएट भी करने उसे और मैं सुनने भी उसे सारे प्रोग्राम की और जितने भी प्रोग्राम असा ने जितने भी प्रेजेंटर पेश करने चाहे वह दिहाड़ी है चाहे शामी है चाहे सुबह है चाहे लेट नाइट है ऑलवेज सुनिया करो अप्रीशिएट करया करो और कोशिश करया करो असा की फीडबैक जाना कोई भी प्रोग्राम के हवाले तुसा की कोई कमी पेशी लगनी है ऑलवेज डू कम एंड जॉइन अस लाइव कॉल करो स्टूडियो नंबर 01157100971 अगर तुसा व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते व्हाट्सएप नंबर भी सेम है ऑल यू हैव टू डू जस्ट ऐड +44 77 +44 115 71 9 7 1 उत्थे तुसा व्हाट्सएप ते मैसेज करी सकने हो जेड़ा भी तुसा पैगाम है मैसेज है कोई भी तुसा रिक्वेस्ट है तुसा नहीं सारा कुछ तुसा असा की उत्थे आखी सकने हो

जी ते तुसां असां दी ऐप डाउनलोड करो और बिल्कुल सुनो क्यों तुसां मिस आउट करो नो यू शुड नॉट बी तुसां मिस आउट होना ही नहीं चाहिए क्योंकि प्रोग्राम तुसां वास्ते पेश किए जा रहे हैं ये सारी कम्यूनिटी वास्ते किए जा रहे हैं सारे जितने भी साढ़े टैक्सी ड्राइवर दोस्त भरा संगी बेली सज्जन जिथे भी हो जितने भी टेक वे रेस्टोरेंट वाले बिजनेस वाले ऑल द कम्यूनिटी ऑल द साउथ एशियन कम्यूनिटी नॉर्थम या जिथे भी हो तुसां सारे वास्ते ये रंगे कश्मीर पेश किया जा रहा है।

जी मुंडे कश्मीर दे, मुंडे कश्मीर दे तुसा ट्रैक सुनी जो सी, जो उम्मीद करने आ तुसा की पसंद आया हो सी, तुसा सुनी जी ओ रंगे कश्मीर। ते वाइल द सॉन्ग वाज प्लेइंग कि असा ने भाई कॉल की थी एंड दे रंग मी एंड दे सेड ब्रदर ब्यूटीफुल प्रोग्राम, कैरी ऑन, कीप डूइंग इट, आई एम रियली एंजॉयिंग इट एंड आई एम ड्राइविंग, आई वाज जस्ट गोइंग ऑन शॉपिंग, टर्नड ऑन एंड आई न्यू इट वाज ट्यूसडे, आई ऑलवेज लिसन टू यू, always listen to your shows and I always keep an eye out for your statuses as well. Thank you bhaiyan, thank you, bahut shukriya, bahut meharbani, eh tusani mohabbat hai, tusana pyar hai. Tusani mohabbat pyar jehda tusan koshish kare ko asan ki call karne ho live call karo, don't talk, tusan usla call karne jela the song was playing, do call me live. बिल्कुल चकया ना करो, बिकॉज आई ऑलवेज वेट फॉर योर शो एवरी ट्यूजडे, आई मेक श्योर दैट 7 o'clock आई बी फ्री, सो आई डू नॉट मिस आउट ऑन रंगे कश्मीर। आई एम अ कश्मीरी सन एंड आई एम अ प्राउड टू बी कश्मीरी एंड आई वॉन्ट टू जस्ट से दिस, बीइंग अ कश्मीरी अल्लाह हैज ब्लेस्ड अस विद सो मेनी थिंग्स and I really was looking forward to something like that coming, a show, radio show, which would be named on our part of land, which is Kashmir. And I would like to say a big thank you to you and to all your team. Thank you so much, brother. This is why we do it. Is sab aso san janab ali is program na nai jada range kashmir rakhe hai, isne piche aur koi wajah nahi, असा चाहने जितनी भी साड़ी कम्युनिटी है, साउथ एशियन कम्युनिटी, तुस किसे मुल्क ने हो, किसे खिते ने हो, जेड़े भी पार्ट नाल तुसा बिलोंग करने हो, असा तुसा ने नाल मुहब्बत करने और असा चाहने कि तुसा ने मुहब्बत ना रिश्ता, प्यार ना रिश्ता साड़े रेडियो नाल ऑलवेज जुड़िया रहे। My brother said, can you please play me a track which is called Kamali? I dedicate this to my wife and she loves this song and I love her more than this song. Oh, that is so nice. And please play this track for my wife and we are both listening to you and thank you for naming your show Rangi Kashmir, and honestly I am so thankful to you from bottom of my heart. Thank you very much bhaijan, bahut shukriya, bahut meharbani, tusan aisa ki message kita, call kiti hai, aisa ki message bhi kita hai, call bhi kiti hai, and you said college ina call kiti hai, main tuhe message karsa college mein, tiyan gallan na kar sakna, while I'm typing I'm really good at it and I've seen that you are good at it, there's no doubt. Chalo ji, keep listening ready for 97.1 FM/DAB Radio, तुसाना अपना शो, अपना रेडियो होस्ट उमर जंजुआ, तुसानी खिदमत इजाजत है रंगे कश्मीर नाल।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: दीदी जासी, and you can be part of our brilliant, beautiful team.

जिंदगी जड़ी है, जिंदगी जड़ी है, इसना ना ही खूबसूरत है जिंदगी। व्हाट इज जिंदगी, जिंदगी क्या चीज़ है, जिंदगी ने हवाले नाल तुसा क्या गल करी सकने हो, क्या बाई सकने हो। खोमी लाइव इन द स्टूडियो नंबर इज 01157109 71 सारा तुसा ना साथ रही गया तकरीबन अबाउट 33 मिनट्स। Right, we're not going to waste any more time. We're going to go straight to the track and keep listening to Radio Fizzar 97.1 FM / Tab Radio. I've got this track lined up for you, brother, and also I'm going to dedicate this song to somebody who's very close to our hearts as well, and we hope they will enjoy this track. Samjhi Takiyo also.

ब्यूटीफुल ट्रैक यू गाइस आर लिसनिंग टू सुबह से लेकर शाम तक इधर इसने बीच में सारी कमर्शियल ब्रेक भी लगी की कोई मसला नहीं नो प्रॉब्लम नेक्स्ट टाइम व्हाट इज वी ओनली गॉट अबाउट 20 odd minutes लेफ्ट विद यू गाइस वी आर गोना ट्राई एंड प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग एंड आई होप brother you love this track and you enjoyed it and I dedicated this especially to obviously to all the people that you said

We just got enough time to play one more track, and I hope you guys will tune in next week. Or अगर कोई गलती गुस्ताखी हुई तो माज़रत उसने वैसे है तो उम्मीद करनी है तुसा सा की फीडबैक दे सो साढ़े प्रोग्राम ने हवाले नाल एंड इफ यू वुड लाइक टू स्पॉन्सर माय शो द रंगे कश्मीर बाय ऑल मींस ऑल द बिजनेस कम्युनिटी आउट देयर यू आर मोर देन वेलकम टू स्पॉन्सर माय शो ए तुसा ने नाम तो बकायदा है तू डेडिकेट किया जा सी टू होल्ड द कम्युनिटी होल्ड द लिसनरशिप एंड एवरीबॉडी एल्स

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention,
3: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर. फजान 97.1 FM, आई लव इट.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.
3: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले.
4: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
5: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ.
6: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं. खैर तो है,
5: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी.
6: ओहो, मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया.
5: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी.
6: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है.
5: AMH सॉलिसिटर्स. होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम करदे रहे. सोने ते सुहागा ए कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी करदे ने.
6: चलें, उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा.
5: हां जी, क्यों नहीं. नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम.
6: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए. नंबर क्या है?
5: लो जी, ओ भी जुबानी याद है. 01156713677. प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने. मुफ्ता मशवरा लो जी.
7: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: आप सुन रहे हैं वो स्टेशन जो सिर्फ गाने नहीं यादें सुनाता है।
1: देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए दूर तक।
0: फजान 97.1 FM हर पल आपके साथ साथ।
2: This is a public service announcement.
3: The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Fazaa 97.1 FM.

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन्न,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए।
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
0: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: मेरे मन को।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
3: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
4: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
3: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
4: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
3: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
4: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
5: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
3: Park Foods, जो नाम है मायार का।
6: You are listening to 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
9: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: From 12:30 PM to 11 PM every Wednesday to Monday.
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी, ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.